जय गुरु भाई बहनों, आप सबको मन स्वागत करे हूँ हमारी आज की प्रभात की सभा में। आप सभा में रिया हो आप लोग सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते। मैं हूँ अपने हाथे आपने बुनंजलि पारेश्वर ने आशीर्वाद। गुरुवार ने तारीख 6 अगस्त 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों में देखी रहे हो कि अपने स्टूडियो ने घड़ी में प्रभात ना 6 बजे के हैं। तब आपने शुरुआत करो प्रभात की सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई बहनों आज सभा ने शुरुआत करेंगे सत्य की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। यहाँ में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में गीत मानस क्रम में अगाड़ी बढ़ेगा। किसान भाई बहनों तक जुड़ू कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 6 बजे में 30 मिनट माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने आपने बोल अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जेने के बालकों बालपन अपने कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मो आपने बोल अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगे तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज नियाड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7 वागे 30 मिनट माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगे अपने अधिकार कानून नियम तक जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 वागे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मोन हमारे हाथे रहेंगे हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। अनस क्रम में बढ़ते तके अपने रुख करेंगे राजस्थानी गीत तक जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 8 वागे 30 मिनट माते। श्रोताओं बिसु कार्यक्रम शुरू था का ठीक 9 वागे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवेगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन्हें बाद भाई बोनो ठीक 9 वागे 30 मिनट माते आप हम रोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। भाई बोनो हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 वागे आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन्हें बाद भाई बोनो शुरू था का आपने पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हम रिश्कों का प्रभात 11 तक 2 पर 1 वागे 9 मिनट। भाई बोनो अगर आप भी अपनी फरमाइश न गीत ने हम चाहो तो मैंने लेकिन मोकली सको फिल्म नाम गीत ना बोल अपने नाम ने अपना गाँव नाम हमारे अनो व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9460051234। तो भाई बहनों आ तो हती हमारी आज ने प्रभात ने सभा में प्रसारित थवा वाली कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आवो अपने सभा ने शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना थकी।

0: प्रमाणों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
2: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ભ્રામરી લણની વાત હે ને મોરેકર આપણી વાત હે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાઘ રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે બારિશ કે મોસમ મેં ફસલો કી વિશેષ દેખભાલ હમ કૈસે કરે
1: જી तो देखिए बहुत अच्छा विषय है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है और हमारी जो फसलें हैं वो भी हमारे खेतों में खड़ी है। तो इस दौरान क्या है कि हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि किस तरह से उसकी देखभाल करें।
0: बिल्कुल।
1: और कई ऐसी चीजें होती है जिनको देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए जो बारिश का मौसम है वो खेती के लिए एक तो वरदान है, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारी फसलें हम अलग अलग प्रकार की फसलें जो बुआई करते हैं खेतों में। इसके साथ ही क्या होता है कि इस दौरान क्या है कि जैसे कीटों का प्रकोप, जल भराव और रोग लग जाते हैं, तो बहुत सारा प्रकोप भी इनका बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पे हमारे जो किसान भाई है उनके लिए यही सावधानी है कि वो अच्छे से उसकी देखभाल करें।
0: बिल्कुल।
1: जैसे अगर हम बात करते बारिश का, जैसे मौसम आता है तो बहुत सारी जो खेती के लिए चुनौतियां पैदा हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि खेत में पानी भर जाना, पौधों की जड़ सड़ने लगना, तना है वो गलने लगता है, पत्तियों पर रोग लगता है, कीट जो है वो तेजी से बढ़ते हैं।
0: जी जी।
1: इसके साथ ही खरपतवार भी अत्यधिक होता है, मिट्टी का कटाव, और इसके साथ पौधों के जो गिरना होता है, क्योंकि उनकी पानी भर जाता है जड़ों में तो वो गिरने भी लगते हैं।
0: जी जी।
1: और इसके साथ में क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये चीजें हैं हमको देखने को मिलती है हमारी खेतीबाड़ी में।
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के मौसम में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को देखने को मिलती है।
1: जी।
0: तो जैसा कि आपने हमें बताया था कि खेत में पानी भर जाता है, तो खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करके किस तरीके से वो इस समस्या से बच सकते हैं?
1: देखिए जब हम खेतीबाड़ी करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि जिस भी खेत में हमारे पानी भरता है तो उसकी निकासी कहाँ से होगी।
0: बिल्कुल।
1: वो पहले से हमें सुनिश्चित करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो नालियां जैसे हम बना देते हैं कच्ची नालियां, वो बनानी चाहिए ताकि वो पानी जो है वो दूसरी दिशा से निकल जाए और कटाव जैसी समस्याएं पैदा नहीं होगी।
0: जी जी।
1: इसके साथ ही है जो पानी को नियंत्रण करने के लिए जो मेड़े हैं वो मजबूत करनी चाहिए, और जहाँ पानी अधिक रुकता है वहाँ जो है छोटी नालियां बनानी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: ताकि वो धीरे धीरे पानी वहाँ से निकल जाए। इसके साथ में जैसे सब्जी हैं, दालें हैं या जो भी आपने लगा रखा है, तो वहाँ पे क्या क्यारियां होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि चारों तरफ जो क्यारी के दीवार होती है उससे वो पानी रुक जाता है, और दूसरा अगर ज्यादा हो तो जिस तरफ पानी का कटाव ना हो उस तरफ से उस पानी को निकाले। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरह से आप उसकी निकासी प्रॉपर करते हो तो पौधे हैं उनकी जड़ों को हवा मिलती है, पौधे पीले नहीं पड़ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जो सड़न होती है वो नहीं होती है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि आपने पानी की निकासी उचित कर रखी है, इसलिए तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और इसी के साथ इस समय पौधों की नियमित निगरानी हमारे किसान भाई बहनों को कैसे करनी है, साथ ही खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है?
1: देखिए दोनों चीजें हैं कि निगरानी बहुत जरूरी है, दूसरा खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि पौधों की नियमित निगरानी, तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने खेत की स्थिति आपको पता लगेगी कि वहाँ दिक्कतें क्या। अगर ऐसा तो नहीं है कि कहीं पत्तियां जो है पीली पड़ रही है या भूरे धब्बे हो गए, तना है वो काला तो नहीं पड़ रहा है, पौधे अचानक है वो मुड़ तो नहीं रही है, या कीट है वो कितने प्रकार के है जो वहां पे दिखाई दे रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से आप अगर अवलोकन करते हैं खेत का तो ये सारी चीजें आपके सामने आती है।
0: जी जी।
1: और सामने आती है तो दूसरा काम होता है कि हम उनका जो उचित जो व्यवस्था करें ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह खरपतवार की हम बात करते हैं, तो खरपतवार क्या होते हैं कि हमारी जो मिट्टी होती है उसका जो पोषण होता है उसको अधिक शोषित करते हैं वो, और जो हमारी खेतीबाड़ी का जो ग्रोथ होता है जिसको बढ़वार जिसको हम बोलते हैं वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि वो उसके साथ कंपटीशन करने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा हो जाती है खरपतवार और फसल की, तो वहां पे नुकसान होने के ज्यादा चांस रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और पौधों का ग्रोथ और पौधे जो पतले आपके रह जाएंगे, उस तरह से उनकी जो स्वास्थ्य और हेल्थ है पौधों की बराबर नहीं होगी।
0: जी हाँ।
1: तो इसलिए हम निराई गुड़ाई की जो बात करते हैं वो 20-25 दिन में आप कर ले ताकि आपके पौधे अच्छे से बढ़े और पैदावार भी आपकी अच्छी होगी।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ ही अगर दूसरी अगर निराई गुड़ाई करनी है तो वो आप 40 से 45 दिन में करें, ताकि 20 दिन का गैप मिल जाए, जो भी खरपतवार आएंगे वो आप अच्छे से उनको निकाल दें। तो इस तरह से आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और आपकी पैदावार है वो भी अच्छी होगी।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात से अवगत करवाया है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जैविक तरीके से हमें हमारी फसलों को कैसे पोषण देना है, और साथ ही समय हम देखते हैं कि कीट और रोग बहुत ज्यादा फैलते हैं, तो इनका निवारण उन्हें कैसे करने की जरूरत है।
1: देखिए, ये जो चीजें हैं ये स्वाभाविक रूप से इस मौसम में हमारे होती है और इनका जो है हमारे परंपरागत उपाय है वो हमें अपनाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग कई बरसों से हमारे पूर्वज भी जो गोबर खाद का उपयोग करते आए हैं, इसके साथ में कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है, वो आप जो है उसका उपयोग करें ताकि पौधे हैं अच्छे से उनको पोषण मिल सके।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ ही जीव अमृत की हम बात करते हैं, तो जीव अमृत का घोल है वो भी आप छिड़के, ताकि पौधों का ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहेगा आपका। दूसरा कि जैसे हम वर्षा अगर रुक जाती है 2-3 दिन, आपको अच्छे से धूप लग जाए, तो उसमें जो है आप जो खाद है वो अच्छे से छिड़क सकते हो, ताकि वो धीरे धीरे जो मिट्टी में मिलके और पौधों को अच्छा पोषण देगा।
0: जी जी।
1: तो इस तरह हम जो है अपना पोषक तत्व खेत में डाल सकते हैं। इससे एक तो मिट्टी की उर्वरकता है वो बढ़ती है, पौधों का ग्रोथ अच्छा होगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वो लंबे समय तक उत्पादन स्थिर रहता है। तो ये हमें करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ में हम देखते हैं, जैसे बोला आपने कि कीट प्रबंधन, कीट प्रबंधन भी हमें बहुत जरूरी है और इसका पता लगेगा खेत के अवलोकन से।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें समय समय पर खेत का अवलोकन करना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ रही है, कौन सा रोग है वो आपको दिख रहा है।
0: जी जी।
1: जैसे जड़ें सड़ रही है या पौधे झुलस रहे हैं, पत्तियों पर धब्बे हैं, पत्तियां मुड़ रही है, या तना में कोई गलन है, या फफूंद तो नहीं है जड़ों में, तो इन चीजों का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजें हैं अगर आपको दिखाई देती है, तो हमारे पास में 10 प्रणी है।
0: बिल्कुल।
1: नीम आधारित दवाइयां हैं हमारी, नीमास्त्र है, इसके साथ में आप जो लहसुन प्याज अदरक का घोल है मिर्ची का, वो सब जो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: तो उस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि इस समय बारिश कई बार बहुत सी बार ज्यादा हो जाती है, और खेत में सही व्यवस्था न होने की वजह से मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई बहनों को मिट्टी का कटाव कैसे रोकने की जरूरत है?
1: देखिए, परंपरागत तरीकों की हम बात करते हैं तो मिट्टी का कटाव को रोकने के सबसे आसान तरीका है कि जो हमारे घास होता है पुराना,
0: बिल्कुल,
1: उस घास को जहाँ पानी की निकासी है वहाँ रख दो आप। तो अगर वहाँ आप उस घास को लगा देंगे, उसकी मेड़ अगर घास के बनाएंगे, तो पानी धीरे धीरे रस के जाएगा, आपकी मिट्टी का खाद भी नहीं जाएगा और आपकी मिट्टी का कटाव भी नहीं हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ जैसे खाली स्थान है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम चाहते हैं जहाँ ढलान होती है उधर ही पानी निकालना, तो होता क्या है कि जब ढलान की तरफ पानी जाता है तो कटाव ज्यादा होता है, तो हमें उसको दूसरी दिशा से निकालना चाहिए।
0: जी जी।
1: ताकि वहाँ कटाव नहीं हो और जो आवश्यक पानी है वो निकल भी जाए। तो इस तरह से हमें करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें, जैसे हम बोरी बंधान की बात करते हैं, तो अगर ज्यादा कटाव है तो आप बोरियों में जो मिट्टी भर के और वो भी आप लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ताकि वो कटाव आपका नहीं होगा। इसके साथ ही जो बारिश के मौसम में, जैसे इस बार है, तो आप जो है आपकी मेड़ों पे जो अधिक जड़ों वाले पौधे हैं, जैसे हमारे बांस है, तो बांस के पौधे क्या है कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और वो किनारों पे आप लगा सकते हैं, ताकि आने वाली अगली बारिश में आपको वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सर,
1: इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है कटाव नहीं होगा तो इससे हमारी मिट्टी को बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि उसके पोषक तत्व है वो बहकर नहीं जाएंगे और हमारे खेत में ही रहेंगे। दूसरा है कि जो लंबे समय तक जो आपके पोषक तत्व है वो आपकी जमीन में बने रहेंगे, उसकी नमी भी लंबे समय तक बनी रहेगी।
0: जी,
1: और जब उत्पादन होगा तब आपका उत्पादन अपेक्षाकृत अच्छा होगा, बेहतर होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर अलग अलग फसलें होती है, कोई मक्का करता है, कोई सोयाबीन, कोई उड़द, कोई धान, तो कोई सब्जियाँ, तो फसलवार विशेष सावधानियाँ क्या क्या हमारे किसान भाई बहनों को बरतने की जरूरत है?
1: देखिए, जैसे हम बात करते हैं मक्का की, तो मक्का में हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा मक्का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है उसका एक तो है कि आप उसका पोषण प्रबंधन, जैसे हमने खाद की बात की,
0: बिल्कुल,
1: दूसरा खरपतवार है वो टाइम से निकाले, और तीसरा खेत की निगरानी है आप 2 से 3 दिन में करते रहें,
0: जी जी,
1: ताकि कुछ कीटों का प्रकोप लगता है तो आप जो है परंपरागत दवाई है, जैसे हमने दसपर्णी निमास्त्र की बात की, तो उस तरह से आप ब्रह्मास्त्र है तो उस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उसी तरह अगर उड़द मूंग की बात करते हैं तो एक तो क्या है कि यहाँ जो है कि जैसे आपके उड़द मूंग है तो वहाँ पानी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो उड़द और मूंग की जो तना होता है वो जल्दी सड़ने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें ध्यान रखना है अगर कुछ रोग है ये पत्तियों पे लग रहे हैं, कीड़े हैं, मच्छर है या इस तरह का है, तो आप वहां निमास्त्र छिड़क सकते हैं, दसपर्णी छिड़क सकते हैं, ताकि उन पे वो रोग ना लगे।
0: बिल्कुल।
1: और आपकी फसल प्रभावित ना हो। इसी तरह जो धान है वो जो 7-8 दिन में हम जो देखते हैं हमने रोपाई कर दी उसकी अच्छे से, तो अब इसके बाद में जब आपकी धान लग रही है तो आपको एक तो पानी की निकासी की व्यवस्था आप अच्छे से रखें ताकि ज्यादा पानी बराबर नहीं रहे। इसके साथ ही जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको हटा दे। होता क्या है कि कुछ पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे पूरे खेत में फैलते हैं, तो इस दौरान क्या है जो पौधे खराब हो गए उनको निकाल के आप साइड में कहीं दूर फेंक दें।
0: जी जी,
1: ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वही जो सब्जियों की हम बात करते हैं तो उठी हुई क्यारियां, जैसे हमने बोला कि थोड़ी मेड़ वाली क्यारियां बनाए ताकि उसका आवश्यक पानी उसके अंदर रहे, अनावश्यक है वो उसके अंदर नहीं आ पाए। दूसरा कि पौधों को सहारा दे, जैसे हम टमाटर मिर्ची की हम बात करते हैं तो इस दौरान क्या बारिश की वजह से हो सकता है कि आपकी फसल गिरने लग जाए।
0: जी जी।
1: तो आप छोटे छोटे डंडे हैं वो आप उनके पास में लगाए तो उनको सपोर्ट मिलेगा, और जो नीचे सड़ी गली पत्तियां हैं अगर वहां है तो उनको हटाते रहे, क्योंकि जब सड़ी गली पत्तियां होती है तो वहां रोग पैदा होने के चांस रहते हैं, तो इस तरह हमें इन चीजों का ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से बारिश के मौसम में उन्हें फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, तो अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोतागणों को और किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सावधानी जो फसल की सुरक्षा है, तो आप जो है खेत का अवलोकन नियमित करें, और जिस तरह की बीमारी या जिस तरह का प्रकोप दिखे उसका तुरंत जो है आप इलाज करें परंपरागत तरीके से, ताकि आपको फसलों को नुकसान नहीं हो और आपका जो पैदावार है वो बेहतर हो।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: માઇન બુનો જેમ કે આપણે આપણા વ્યાસમાં વાંગીલાલજી જોડે તક હતો અને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા આખાની વાત બતાડી હૈ આશા કરો હો કે આ હંગરી વાત આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડો સૂટા

और फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नया विषय निहाते तारुदी राम राम राम राम।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में विटामिन की कमी यानी कि पोषण तत्वों की कमी के क्या संकेत हैं और उन्हें हम प्राकृतिक तरीके से पूरा कैसे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी एक दिन की देखभाल से नहीं बल्कि हर दिन अपनाई गई अच्छी आदतों से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: विटामिन की कमी भी अचानक नहीं होती है बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। इसलिए यदि कशिश हम बच्चों के खान पान व्यवहार ऊर्जा वृद्धि और दैनिक गतिविधियों पर नियमित ध्यान दें तो कमी के शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचाना जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम श्रोता साथियों भविष्य में कई नई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकता है।
0: जी हाँ दिलीप जी, तो आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हम ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में विटामिन की कमी के क्या संकेत हो सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्राकृतिक तरीके हम अपनाएं। तो दोस्तों, हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि संतुलित और विविध भोजन से होता है। अंजलि जी, हमारे गांवों और स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज, बाजरा, मूंगफली और अन्य जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो बच्चों को जरूरी विटामिन और पोषक तत्व देने में सक्षम होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, यदि परिवार इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को बच्चों के भोजन का नियमित हिस्सा बना ले तो अधिकांश पोषण संबंधित कमियों से बच्चों को बचाया जा सकता है।
1: जी जी।
0: साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल भोजन देना ही पर्याप्त नहीं होता। बच्चे का समय पर खाना खाना, खुलकर खेलना, पर्याप्त नींद लेना, सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना और स्वच्छता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: जब ये सभी बातें एक साथ अपनाई जाती है साथियों, तब शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठा पाता है और बच्चा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल। यही कशिश बात आती है कि माता पिता और शिक्षक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को बचपन से ही रंग बिरंगे फल, सब्जियां और घर का बना पौष्टिक भोजन पसंद करना सिखाया जाए तो आगे चलकर वह स्वयं भी स्वस्थ खान पान की आदत अपनाता है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को भोजन के महत्व के बारे में सरल भाषा में समझाना होगा, उन्हें रसोई और भोजन की तैयारी से जोड़ना और नई पौष्टिक चीजें चखने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: ये भी याद रखे श्रोता साथियों कि हर कमजोरी का कारण केवल विटामिन की कमी नहीं होता। यदि बच्चा लंबे समय तक सुस्त रहे, उसकी लंबाई, वजन अपेक्षित रूप से न बढ़े, बार बार बीमार पड़े या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो घरेलू अनुमान लगाने के बजाय योग्य स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे उचित कदम है।
0: जी हाँ।
1: समय पर सही जांच और उचित मार्गदर्शन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। ऐसे में श्रोता साथियों, हम सभी को मिलकर ये प्रयास करने हैं कि बच्चे की थाली को केवल भोजन से नहीं बल्कि पोषण से हम भरेंगे। उन्हें ऐसी आदतें देंगे जो जीवन भर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें।
1: बिल्कुल।
0: स्वस्थ भोजन, नियमित दिनचर्या, प्राकृतिक आहार, स्वच्छता और परिवार का स्नेह, अंजलि जी, ये सभी मिलकर बच्चों को मजबूत शरीर, तेज दिमाग, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उज्जवल भविष्य प्रदान करते हैं। आज यदि हम बच्चों के पोषण पर सही ध्यान देंगे साथियों, तो कल वे स्वस्थ, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे।
1: जी हाँ।
0: और यही एक समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल कशिश। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि बच्चों में विटामिन की कमी के कौन से संकेत होते हैं और प्राकृतिक तरीके से हम उन्हें समय रहते कैसे पूरा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें निरंतर आगे

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि बचपन जीवन की वो अवस्था है जब शरीर सबसे तेज गति से बढ़ता है और विकसित होता है। इसी समय हड्डियां मजबूत होती है, मस्तिष्क नई चीजें सीखता है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: इस पूरे विकास के लिए केवल पेट भरना कशिश पर्याप्त नहीं होता, बल्कि शरीर को अलग अलग प्रकार के विटामिन और खनिज की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि बच्चे के भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी रह जाए

0: इसका प्रभाव धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य, पढ़ाई, व्यवहार और विकास पर भी दिखाई देने लगता है। अक्सर माता पिता ये समझ नहीं पाते कि बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है,
1: जी हाँ,
0: जल्दी थक क्यों रहा है या उसकी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा। कई बार इसका कारण किसी गंभीर बीमारी के बजाय शरीर में विटामिन की कमी भी हो सकती है। इसलिए समय रहते संकेतों को पहचानना और प्राकृतिक तरीके से उनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथी अगर बात करें तो सबसे पहले श्रोता साथियों, हम यहाँ बात करते हैं विटामिन ए की। तो ये जो है वो बच्चों की आंखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी कमी होने पर बच्चे को रात में कम दिखाई देता है, आंखों का सूखापन, बार बार संक्रमण होना और त्वचा का रूखा होना जैसे लक्षण सामान्य होते हैं साथियों।
0: जी जी,
1: अगर बात करें इसकी पूर्ति की तो इसकी पूर्ति के लिए हमें गाजर, शकरकंद, कद्दू, पपीता, आम और हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों को खिलानी चाहिए। वहीं अगर विटामिन डी की बात करें तो यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी कमी से अंजलि जी बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, पैरों में दर्द रहता है और विकास प्रभावित होता है। इसकी पूर्ति के लिए श्रोता साथियों, हमें सुबह की हल्की धूप लेनी चाहिए। दूध, दही और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ इसके प्राकृतिक स्रोत होते हैं, तो हम अपने बच्चों के आहार में इन्हें भी शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, यही कशिश अब बात करें विटामिन सी की, तो श्रोता साथियों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसकी कमी होने पर मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना और बार बार सर्दी जुखाम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए हमें बच्चों को आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू और टमाटर जैसी चीजें खिलानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: वहीं विटामिन बी की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा देने, मस्तिष्क के विकास और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी होने पर कमजोरी, थकान, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में ध्यान न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए हमें बच्चों के खाने में साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: वहीं अब बात आती है कशिश विटामिन ई की, तो श्रोता साथियों, शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ये विटामिन ई। इसके लिए हम बच्चों को बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और वनस्पति तेल खिला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: याद रखना चाहिए कि हर बच्चे को विटामिन की दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। यदि बच्चा संतुलित, ताजा और अलग अलग प्रकार का भोजन करता है तो अधिकांश विटामिन प्राकृतिक रूप से ही मिल जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि आजकल पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, जंक फूड और मीठे पेय बच्चों के भोजन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इनसे अंजलि जी पेट तो भर जाता है बच्चों का, लेकिन शरीर को आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्तों परिवार को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की थाली में हर दिन अलग अलग रंग के फल, हरी सब्जियाँ, दालें, दूध और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हो। भोजन के साथ साथ स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। यदि बच्चा बार बार संक्रमण का शिकार होता है तो शरीर पोषक तत्वों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता।
0: जी हाँ,
1: इसलिए साफ पानी, हाथ धोने की आदत और संतुलित दिनचर्या भी अच्छे पोषण का हिस्सा है। हम श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे कि माता पिता को भी बच्चों की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा लगातार थका हुआ उन्हें दिखता है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, बार बार बीमार पड़ता है, वजन या लंबाई सामान्य गति से नहीं बढ़ रही है और उसकी त्वचा और बालों पर बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो इसे सामान्य बात मानकर अनदेखा माता पिता को नहीं करना है।
0: जी जी,
1: इसके बजाय समय पर स्वास्थ्य जांच और सही सलाह बच्चे के बेहतर विकास में मदद कर सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों का पोषण केवल आज की भूख मिटाने का विषय नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: जिस बच्चे को बचपन में सही पोषण मिलता है वही आगे चलकर स्वस्थ शरीर, तेज बुद्धि, मजबूत आत्मविश्वास और बेहतर कार्य क्षमता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए विटामिन की कमी को केवल एक स्वास्थ्य समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे बच्चे के संपूर्ण विकास से जुड़ा हुआ विषय समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ये भी सच है कि बच्चों की अच्छी सेहत किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। परिवार, विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पूरा समाज मिलकर ऐसा वातावरण बना सकता है जहाँ हर बच्चे को पौष्टिक भोजन, सही जानकारी, स्वस्थ जीवन शैली का अवसर मिले।
1: जी हाँ,
0: यदि माता पिता बच्चों के जीवन में विविधता रखें, उन्हें स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों से परिचित कराएं और खाने की अच्छी आदतें विकसित करें, तो बच्चे प्राकृतिक रूप से आवश्यक विटामिन पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए महंगे खाद्य पदार्थों की नहीं बल्कि सही जानकारी और नियमितता की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: हमें ये भी समझना होगा कि बच्चे की थाली जितनी रंगीन होगी उसका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। हरी सब्जियाँ, पीले और नारंगी फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, बाजरा, रागी, तेल, मूंगफली और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ मिलकर शरीर को वह शक्ति देते हैं जो किसी भी कृत्रिम विकल्प से अधिक लाभकारी होती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि बचपन से ही बच्चों में प्राकृतिक भोजन के प्रति रुचि विकसित कर दी जाए तो वे बड़े होकर भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सक्षम बनते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर एक श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है।
0: बिल्कुल,
1: विषय ही श्रोता साथियों स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ना चाहता है कशिश। कोई दोस्तों के बीच खुशियां ढूंढता है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी पहचान खोजता है, तो कोई दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा रहता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि यदि कुछ समय केवल अपने साथ बिताया जाए तो वो भी उतना ही सुखद और सुकून देने वाला हो सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था हमारे युवा साथियों को कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोस्तों के बीच खुशियां ढूंढते हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया में अपनी पहचान खोजते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि कुछ समय कभी हमने अपने साथ बिताया है, यानी कि मी टाइम हमारे पास है या नहीं। अगर आपको बताऊं श्रोता साथियों, तो स्वयं से जुड़ना सबसे बड़ा परिचय होता है। यानी कि दोस्तों, हम अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, लेकिन सबसे कम समय हम स्वयं को समझने में लगाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब हम अपने साथ समय बिताते हैं जागृति जी, तब हमें अपनी क्षमताओं, हमारी कमियां, सपनों और इच्छाओं का एहसास होता है, और यही आत्म पहचान हमें जीवन की सही दिशा चुनने में मदद करती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि युवावस्था में अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि साथियों, सबसे जरूरी होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने।
1: बिल्कुल कशिश, अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अकेले रहना दुखद है, लेकिन सच ये है दोस्तों के अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है।
0: जी जी।
1: अकेलापन मजबूरी हो सकता है, लेकिन एकांत हमारी पसंद हो सकता है। एकांत हमें सोचने, सीखने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: कई महान वैज्ञानिकों, साहित्यकार और कलाकारों ने अपने जीवन के श्रेष्ठ विचार एकांत में ही खोजे हैं। हम देखते हैं कशिश कि जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब दूसरों की स्वीकृति का इंतजार कम हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: युवा जीवन में कई बार असफलता हमें मिलती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास हमारे अंदर है, तो वही असफलता आगे बढ़ने की प्रेरणा भी बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: अपने निर्णय स्वयं लेना, अपनी गलतियों से सीखना और लगातार आगे बढ़ना ही आत्मविश्वास की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी। साथ ही अगर मानसिक शांति को लेकर हम बात करें, तो जैसा कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है।
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार तुलना की आदत ने हमारे मन की शांति को प्रभावित किया है साथियों। ऐसे में यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकाले, शांत वातावरण में बैठे, गहरी सांस ले, कोई अच्छी पुस्तक पढ़े या अपने मन की बातें डायरी में लिखें दोस्तों, तो इन सभी चीजों से हमारा मन हल्का महसूस होता है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, मानसिक शांति सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, हम देखते हैं कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनने का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं का साथ देना सीख जाता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है, बल्कि समाधान खोजता है। ऐसे लोग जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी। साथ ही जब हमारा मन शांत होता है साथियों, तब हमारे मन में नए विचार जन्म लेते हैं। यदि हम हर समय मोबाइल, टीवी या शोर शराबे में व्यस्त रहेंगे, तो हमारे भीतर की रचनात्मकता दब जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय आप निकालें, उसमें आप चित्र बनाइए, कविता लिखिए, संगीत सुनिए, पौधे लगाइए या प्रकृति के बीच टहलने जाइए। जब आप श्रोता साथियों ये जो छोटे छोटे पल अपने जीवन में बिताएंगे, तो ये आपको नई ऊर्जा और नई सोच की ओर लेकर जाएगा।
1: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज का युवा सबसे अधिक समय स्क्रीन के सामने बिताता है, यह हम सभी जानते हैं कशिश। दूसरों की सफलता देखकर वो कई बार निराश भी हो जाते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन याद रखिए युवा साथियों, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन हमेशा वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक जीवन तो हमारे सामने है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों से आमने सामने मिलिए, और सबसे महत्वपूर्ण, समय के साथ भी कुछ पल बिताइए। अगर हम स्वयं से खुश नहीं है, तो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है कशिश, वही दूसरों का सम्मान करना भी जानता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए पहले स्वयं से प्रेम करना सीखिए, स्वयं को स्वीकार कीजिए और अपनी कमियों को सुधारिए और अपनी खूबियों को पहचानिए।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि हम बातें हमारे युवा साथियों से कर ही रहे हैं कि स्वयं के साथ समय बिताना भी सुखद हो सकता है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम जान पा रहे थे कि किस तरह से स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट केवल अपने लिए निकालिए। मोबाइल से आप दूरी बनाइए, अपने सपनों के बारे में जरूर सोचिए।
1: बिल्कुल।
0: अपने लक्ष्य को लिखिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, प्रकृति के बीच भी समय बिताइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि दोस्तों जीवन में परिवार, मित्र और समाज का साथ अनमोल होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सबसे स्थायी और सच्चा साथ हमारा अपना ही है। जब हम स्वयं को समझते हैं, स्वयं पर विश्वास रखते हैं साथियों, और स्वयं का सम्मान करते हैं, तब जीवन की कठिन राहें भी हमें आसान लगने लगती हैं। याद रखिए युवा साथियों कि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। ऐसे में हम सभी को हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालना होगा, अपने मन की बात को सुनना होगा, अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा साथियों, और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना होगा।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तब सबसे पहले स्वयं के साथ होते हैं।
1: जी जी।
0: और जीवन की अंतिम यात्रा में भी स्वयं ही हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं।
1: जी हाँ।
0: फिर भी विडम्बना ये है कशिश कि हम पूरी दुनिया को जानने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं को जानने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। वास्तव में श्रोताओं, जिस दिन हम स्वयं का साथ पसंद करना सीख जाएंगे, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा सुंदर अध्याय शुरू हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जीवन की सबसे सुंदर यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की है।
1: जी
0: जो
1: हाँ।
0: व्यक्ति अपने भीतर की शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से जुड़ जाता है, उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से विचलित नहीं कर पाती। इसीलिए आइए प्रतिदिन कुछ पल अपने स्वयं के साथ जिए, स्वयं से मित्रता करिए, और ये विश्वास जगाए श्रोताओं कि स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जो स्वयं का साथी बन जाता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी। युवा साथियों, आप सोचिए कि आज हम अपने करियर, पढ़ाई और भविष्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या साथियों, हम अपने व्यक्तित्व पर समय निकाल रहे हैं? साथियों, जिस प्रकार बैंक में जमा किया हुआ धन भविष्य में काम आता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं पर लगाया गया समय भी जीवन भर लाभ देता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में अच्छी आदतें, अच्छे विचार, नई पुस्तकें पढ़ना, कोई नई कला सीखना और अपने व्यवहार को बेहतर बनाना साथियों, ये सब जो है वो स्वयं में किया गया एक निवेश है। इसका लाभ केवल आज नहीं मिलेगा आपको, बल्कि पूरे जीवन मिलेगा। हम देखते हैं जागृति जी कि कई युवा हर छोटे बड़े निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिसका परिणाम ये होता है कि वे अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन साथियों, जब व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताता है तब वह अपने विचारों को स्पष्ट कर पाता है।
0: बिल्कुल।
1: सही गलत का विवेक विकसित करता है और धीरे धीरे वह परिस्थितियों के अनुसार ही सही निर्णय लेना सीख जाता है। यही गुण जागृति जी उसे जीवन में नेतृत्व करने योग्य बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वही है जो हमारा स्वयं से होता है। अगर हम स्वयं को समझना, स्वीकारना और अपने साथ खुशी से जीना सीख जाए तो कोई भी परिस्थिति हमें लंबे समय तक निराश नहीं कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, दूसरों का साथ जीवन को रंगीन बनाता है, लेकिन स्वयं का साथ जीवन को और मजबूत बनाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं कशिश, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपने सपनों को दिशा देते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरता है। श्रोताओं, आज का युवा यदि प्रतिदिन कुछ समय केवल स्वयं के लिए निकाले कशिश, अपने विचारों से बातचीत करे, अपनी गलतियों से वो जरूर सीखे, अपनी सफलताओं का सम्मान करे और अपने भविष्य की योजना बनाए, तो वो न केवल एक सफल व्यक्ति बनेगा बल्कि एक संवेदनशील, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीख जाते हैं वह दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटने की क्षमता रखते हैं। इसलिए याद रखिए, दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी वो है जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है, और वो साथी आप स्वयं है। इसीलिए स्वयं को समय दीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और हर दिन अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बस यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम केवल दूसरों का सहारा बनने की कोशिश नहीं करें, बल्कि स्वयं के भी सबसे अच्छे मित्र बने, क्योंकि जब इंसान स्वयं का साथ पसंद करना सीख जाता है तब अकेलापन अवसर बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: संघर्ष अनुभव बन जाता है, असफलता सीख बन जाती है और जीवन एक नई ऊर्जा से भर उठता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना युवा साथियों को यहाँ पर कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सुबह सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं, बचत की आदत बहुत जरूरी है परिवार और राष्ट्र दोनों के लिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी छोटी बचत से बड़ा भविष्य बनता है। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, आज की समृद्धि कल भी बनी रहे ये आवश्यक नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति परिवार और समाज बचत की आदत को अपनाते हैं अंजलि, वे कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत अधिक आत्मविश्वास से कर पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: बचत केवल धन को अलग रख देने का नाम नहीं है बल्कि दूरदर्शिता, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज का समय उपभोक्तावाद का युग है।
1: बिल्कुल,
0: आकर्षक विज्ञापन, ऑनलाइन खरीदी, फैशन और दिखावे की प्रवृत्ति ने लोगों को अनावश्यक से अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित कर दिया है। ऐसे माहौल में श्रोता साथियों, बचत की आदत केवल आर्थिक मजबूती नहीं देती बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, परिवार की स्थिरता और राष्ट्र की प्रगति का आधार भी बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा जाता है कि बचत की आदत परिवार और राष्ट्र दोनों की ताकत है।
1: जी हाँ अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस विषय पर बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है बचत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, कहा गया है कि समृद्धि केवल अधिक कमाने से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण बचत और संतुलित जीवन जीने से आती है। जिस घर में बचत का दीपक जलता है वहां आत्मविश्वास, सुरक्षा और खुशहाली का उजाला स्वयं फैल जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात करें कि बचत का क्या अर्थ है। तो श्रोता साथियों, बचत का अर्थ केवल पैसे बचाना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इसका अर्थ है आय का एक निश्चित भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, अनावश्यक खर्चों से बचना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, समय, ऊर्जा, पानी, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत करना।
0: जी हाँ,
1: सच्ची बचत वही है जागृति जी जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
0: बिल्कुल अंजलि, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है हमारे सामने कि उनका पूर्व में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि कभी कोई बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, नौकरी छूट जाना, व्यवसाय में घाटा, शिक्षा या विवाह जैसे बड़े खर्च।
1: बिल्कुल,
0: अगर ये बचत नहीं होगी श्रोताओं तो ऐसी परिस्थितियों में परिवार आर्थिक संकट में फंस सकता है। वहीं अगर बचत करने वाला परिवार है तो वो कठिन समय में भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हर परिवार की पहली जिम्मेदारी अपने सदस्यों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि परिवार नियमित बचत करता है तो बच्चों की अच्छी शिक्षा संभव हो पाती है, चिकित्सा खर्च आसानी से पूरे होते हैं, घर बनाने और खरीदने का सपना पूरा हो पाता है, वृद्धावस्था श्रोता साथियों सुरक्षित बनती है और कर्ज लेने की आवश्यकता कम होती है। कहना चाहेंगे जागृति जी कि बचत परिवार को आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मनिर्भरता ही मजबूत समाज की नींव कहलाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, कहा गया है कि बचत केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि एक संस्कार भी है। भारतीय परिवारों में पहले बच्चों को गुल्लक दी जाती थी, वे छोटी छोटी राशि जमा करते थे। आज हम देखते हैं कि हम भी अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को गुल्लक देते हैं ताकि उनमें छोटी छोटी राशि जमा करने की आदत अभी से विकसित हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: इनसे उन बच्चों में धैर्य पनपता है, अनुशासन आता है और भविष्य के प्रति सोच भी विकसित होती है। आज अगर माता पिता बच्चों को बचत का महत्व सिखाएंगे वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज सोशल मीडिया के कारण लोग दूसरों की जीवन शैली देखकर प्रभावित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, अनावश्यक पार्टियां, दिखावटी समारोह, श्रोता साथियों इन सब पर अत्यधिक खर्च आर्थिक संतुलन पैदा करता है। सच्ची समृद्धि दिखावे में नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा में होती है। जो व्यक्ति अपनी आय से कम खर्च करता है वही वास्तव में संपन्न बनता है। कहना चाहेंगे कि बचत व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। जिस व्यक्ति के पास बचत होती है जागृति जी, वह आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाता है, कठिन समय में दूसरों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि श्रोता साथियों नए अवसरों का लाभ उठा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे व्यवसाय शुरू कर सकता है और निवेश कर सकता है। यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर राष्ट्र की शक्ति बनती है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे भारतीय परिवार में महिलाओं ने सदैव बचत की परंपराओं को जीवित रखा है। आज भी हम देखते हैं अंजलि कि घर के बजट का संतुलन, सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन और छोटी छोटी बचत की आदत से हमारे घर की महिलाओं ने बहुत सारे परिवारों को आर्थिक संकट से बचाया है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह और महिला बचत समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। श्रोताओं, गांव में बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने से हमारे जो किसान हैं उनके संकट के समय उन्हें सहारा मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: साहूकारों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है, छोटे उद्योग विकसित होते हैं, स्वरोजगार बढ़ता है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी हम इसी तरह ढेर सारी बातों को जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
2: गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी, खर्चा रुपया।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि बचत की आदत किस तरीके से परिवार और राष्ट्र दोनों की ताकत होती है, जिसपे हम जान पाए कि बचत क्यों जरूरी है, महिलाएं किस तरीके से पहले के समय में बचत करती थी और उसके कई सारे फायदे होते थे। यही अब बात आती है ग्रामीण भारत और बचत की। तो श्रोता साथियों, गाँवों में बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने से किसानों को संकट के समय सहारा मिल पाता है, साहूकारों पर निर्भरता घटती है, छोटे उद्योग विकसित होते हैं, स्वरोजगार बढ़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जब लोग बैंक, डाकघर और अन्य सुरक्षित संस्थानों में बचत करते हैं तो उनकी पूंजी सुरक्षित रहती है, ब्याज प्राप्त होता है, बैंक उसी धन से उद्योग और किसानों को ऋण देते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और इस प्रकार व्यक्तिगत बचत राष्ट्र विकास में योगदान दे पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, बचत का अर्थ केवल धन इकट्ठा करना नहीं होता है बल्कि वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन स्थापित करना भी है श्रोताओं।
0: बिल्कुल,
1: और ये वो शक्ति है जो परिवार को संकट में सहारा देती है, बच्चों के सपनों को पंख देती है, बुजुर्गों को सुरक्षा का विश्वास देती है और पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।
0: जी जी
1: अंजलि, जब प्रत्येक परिवार अपनी आय, समय, ऊर्जा, जल, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख जाएंगे तब बचत एक व्यक्तिगत आदत न रहकर राष्ट्रीय चरित्र बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे नागरिक ही आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं। इसीलिए श्रोताओं, निसंदेह कहा जा सकता है कि बचत की आदत परिवार और राष्ट्र दोनों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, बचत की आदत के लिए हमें आय का कम से कम 10-20% हिस्सा बचा कर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मासिक बजट तैयार करना चाहिए, अनावश्यक खर्चों की सूची तैयार करनी चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। छोटी बचत को श्रोता साथियों महत्व दें, बच्चों को गुल्लक और बचत का अभ्यास कराएं, बिजली, पानी और भोजन की बर्बादी को रोकें, इसी के साथ आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझें, नियमित निवेश की आदत विकसित करें। श्रोता साथियों, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि एक मजदूर प्रतिदिन अपनी मजदूरी में से केवल 50 रुपए अलग रखता था तो वर्षों तक उसने यह क्रम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसी बचत से उसने

0: बच्चों को पढ़ाया, छोटा मकान बनाया और बाद में एक छोटी सी दुकान शुरू की।
1: जी हाँ।
0: लोग उसकी सफलता को भाग्य समझते थे, लेकिन उसकी असली पूंजी उसकी नियमित बचत और अनुशासन था। ये उदाहरण श्रोता साथियों हमें बताता है कि बड़ी सफलता अक्सर छोटी निरंतर बचत से ही आती है।
1: बिल्कुल अंजलि, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों या बड़े उद्योगों से नहीं आती, बल्कि उसके नागरिकों की सोच, अनुशासन और बचत की संस्कृति से ही तय होती है।
0: बिल्कुल,
1: जो परिवार आज थोड़ी सी बचत का संकल्प लेते हैं वही कल आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीते हैं। यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति, सामाजिक स्थिरता और विकास की मजबूत नींव बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल अधिक कमाने की नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने की और नियमित बचत करने की है। बचत हमें संकट में सहारा देती है, अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता देती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, बचत केवल धन जमा करने की प्रक्रिया नहीं
1: जी हाँ।
0: बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यह हमें समय, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास और दूरदर्शिता सिखाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जिस परिवार में बचत की आदत होती है वहाँ भविष्य के प्रति सुरक्षा, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। और जब ऐसे लाखों परिवार मिलकर बचत की संस्कृति अपनाते हैं तब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, निवेश बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। आज आवश्यकता जागृति जी इस बात की है कि हम केवल अधिक कमाने की नहीं बल्कि समझदारी से बचाने की आदत डाले। छोटी छोटी बचत से ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह धन के साथ साथ समय, जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत करेगा तो हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से अधिक सशक्त बनेगा। इसलिए दोस्तों आइए हम सभी इस बात को माने कि आज की समझदारी भरी बचत कल की सुरक्षित समृद्धि है। हर परिवार बचत अपनाए, हर नागरिक जिम्मेदारी निभाए। जब बचत बनेगी हमारी आदत तभी मजबूत होगा परिवार और समृद्ध बनेगा राष्ट्र।
1: जी हाँ अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को बस यही कहना चाहेंगे कि बचत केवल पैसों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी, परिवार को सुरक्षित और राष्ट्र को समृद्ध बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें संयम, दूरदर्शिता और अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, जिस प्रकार एक ईंट मिलकर मजबूत भवन का निर्माण करती है उसी प्रकार प्रत्येक परिवार की छोटी छोटी बचत मिलकर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बचत की हर छोटी शुरुआत बड़े भविष्य की मजबूत नींव है। जब हर घर बचत को अपनाएगा तब हर परिवार मुस्कुराएगा।
0: बिल्कुल,
1: जब हर परिवार आत्मनिर्भर बनेगा अंजलि तब भारत समृद्ध, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में नई पहचान बनाएगा। यही बचत की सच्ची शक्ति है और यही परिवार का विश्वास है और यही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: समय हो चला है हमारे कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है मौसम के सामान्य चक्र में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। आज हम देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है, कभी लंबे समय तक सूखा रहता है, तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इन बदलावों का असर केवल पेड़ पौधों या जानवरों पर ही नहीं पड़ता, इसका असर सीधे सीधे इंसानों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आज हर गांव, हर शहर, हर परिवार किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है। यदि समय रहते मनीषा हम नहीं संभले तो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं गंभीर हो सकती हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। यह केवल पर्यावरण तक सीमित समस्या नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों पर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: पिछले कुछ वर्षों में श्रोता साथियों, पृथ्वी का औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसम के बदलते स्वरूप, जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगलों में लगने वाली आग जैसी घटनाएं हैं, वे जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जब पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ने लगता है, मौसम का संतुलन बिगड़ जाए और प्राकृतिक घटनाओं की तीव्रता बढ़ जाए, तो इसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसके प्रमुख कारण है जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक और कचरे का अनियंत्रित निस्तारण, बढ़ता शहरीकरण और इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, इन कारणों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यही बात करें मनीषा कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि गर्मी के समय में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक होता है। आज गर्मियों में तापमान पहले से अधिक बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: इससे हम देखते हैं कि लू लगना, चक्कर आना, शरीर में पानी की कमी होना, बेहोशी, रक्तचाप बढ़ना, हृदय रोग का खतरा और विशेष रूप से खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, बदलते मौसम के कारण मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे हम देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत ज्यादा हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: बारिश के बाद गंदा पानी जमा होने से कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं। इसी के साथ बताना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों को कि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के समय पीने का पानी दूषित हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: जिससे डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसे बीमारियां फैलती है। सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों को इससे होता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियां हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। श्रोता साथियों, जलवायु परिवर्तन के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हम देखते हैं कि अस्थमा, एलर्जी, खांसी और फेफड़ों के रोग, साथ ही श्रोता साथियों सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। यहीं अगर बात करें कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि लगातार सूखा, फसल खराब होना, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम देखते हैं कि लोगों में तनाव, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याएं वो बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। यदि श्रोता साथियों फसलें कम होगी तो भोजन की कमी होगी, पौष्टिक आहार का अभाव होगा, साथ ही हम देखते हैं कि बच्चों में कुपोषण, गर्भवती महिलाओं में कमजोरी जैसी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल, यही मनीषा बात करे सबसे अधिक प्रभावी कौन, तो श्रोता साथियों जलवायु परिवर्तन का असर सभी पर पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, पहले से बीमार व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है वो प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। जब मौसम बिगड़ता है तो खेती प्रभावित होती है, पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, पीने के पानी की कमी हो जाती है, आय कम हो जाती है, पोषण स्तर गिर जाता है। इसका सीधा असर पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं। तो ये बातें हमारे श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर जो है वो हमारे पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: इसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही मनीषा बात आती है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, यदि हम मिलकर प्रयास करें तो इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, पानी बचाना है, बिजली की बचत करनी है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन अपनाने हैं और घर के आसपास साफ सफाई रखनी है और वर्षा जल का संचयन करना है। अगर ये सारे प्रयास मनीषा हम सभी मिलकर करेंगे तो जलवायु परिवर्तन से बचाव हो सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, ये तो हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन के बचाव के उपाय के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं। यही अगर बात करें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम क्या प्रयास कर सकते हैं, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें खूब पानी पीना है। गर्मी में दोपहर के समय श्रोता साथियों बाहर जाने से बचे, साफ और ताजा भोजन करें, साथ ही श्रोता साथियों उबला हुआ या स्वच्छ पानी पिए, मच्छरों से बचाव करें, समय पर टीकाकरण को अपनाएं। यही अगर अंजलि जी बताएं कि सामुदायिक स्तर पर हमें क्या प्रयास करने चाहिए।
0: जी जी।
1: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गांव की हमें नियमित सफाई का अभियान चलाना है, पौधा रोप

0: पण हमें करना है, साथ ही जल स्रोतों की रक्षा करनी है।
1: बिल्कुल,
0: स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने ही। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे आसपास के गांवों के जो लोग हैं उन्हें भी हमें जागरूक करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि सरकार और समाज की क्या भूमिका है। तो श्रोता साथियों, हम अगर सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि सही तरीके से सही नहीं हो पाएगी। इसलिए दोनों को मिलकर प्रयास करने हैं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, मौसम संबंधित समय पर चेतावनी देना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के कानूनों का पालन करना।
0: बिल्कुल,
1: समाज की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो कल हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। हर लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा देगा। हर बचाई गई पानी की एक बूंद जीवन बचाएगी। हर जागरूक नागरिक जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक सच्चा योद्धा बन सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: बढ़ता तापमान, प्रदूषण, जल संकट, नई बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं यह संकेत देती है श्रोता साथियों कि अब केवल चिंता करने का नहीं बल्कि सामूहिक कार्रवाई करने का समय है। स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है श्रोता साथियों जब प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बना रहे। आइए श्रोता साथियों, हम अपने घर, गांव, समुदाय से शुरुआत करें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जल बचाएं, स्वच्छता अपनाएं, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। यही प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए अंजलि जी, स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी विरासत बनेगा।
1: बिल्कुल, यही बात करें श्रोता साथियों तो जलवायु परिवर्तन केवल मौसम में बदलाव का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे खान पान, स्वच्छ जल, शुद्ध हवा, खेती, पशुपालन और जीवन शैली तक पहुंच चुका है।
0: जी हाँ।
1: यदि हम इसे केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी मानकर अनदेखा करेंगे तो आने वाले वर्षों में इसका दुष्प्रभाव और अधिक गहरा होगा। इसलिए श्रोता साथियों, हर नागरिक, हर परिवार और हर समुदाय को अपनी भूमिका समझनी होगी और पर्यावरण संरक्षण को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना होगा। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रकृति स्वस्थ रहे। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसे उपाय अपनाने होंगे जो संसाधनों का संरक्षण करे और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करे। छोटे छोटे प्रयास जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, कचरे का सही प्रबंधन, स्वच्छता बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना, ये सारे परिवर्तन मिलके बड़ी परिवर्तनों की नींव रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ानी होगी, समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और बदलती जलवायु के अनुरूप जीवन शैली अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए श्रोता साथियों, जब समाज का हर वर्ग मिलकर प्रकृति की रक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प लेगा, तभी हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ नागरिक और सुरक्षित जीवन एक दूसरे के पूरक बनकर समृद्ध, खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे। यही हमारी साझा जिम्मेदारी, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा सच्चा दायित्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, कहते हैं ना कि समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि समय एक ऐसी अनमोल पूंजी है साथियों, जो हर किसी को बराबर ही मिलती है। ना कोई अमीर है तो ज्यादा खरीद सकता है इसे, ना कोई गरीब है जो इसे बचा सकता है। फिर भी श्रोता साथियों, फर्क क्यों पड़ता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है साथियों, समय का सही उपयोग। क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है, उसे पता है कि उसे समय का सदुपयोग कैसे करना है, और वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में असफल भी नहीं होता। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर श्रोता साथियों आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और समय को इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी जाती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोता साथियों, की शुरुआत में मनोरंजन करना भी जरूरी है, और ये तो हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है। तो पहले उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि मैं आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बातचीत कर रही हूँ एक नए विषय को लेकर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं समय के सही उपयोग को लेकर। साथियों, कहते हैं ना कि अगर जीवन में सबसे कीमती कुछ चीज है तो वह है हमारा समय। क्योंकि श्रोता साथियों, पैसा अगर खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है साथियों, लेकिन एक बार जो समय निकल गया उसे वापस कभी नहीं पाया जा सकता। और यही हमारे वास्तविक जीवन का सत्य है। क्योंकि श्रोता साथियों, समय की कीमत वही समझता है जिसने इसे खोया हो। आज हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। साथियों, अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझूं, तो मेरे घर के पास में एक रवि नाम का लड़का रहता है। उसके पापा उसे बार बार कहते हैं कि रवि बेटा ये काम कर ले, रवि बेटा वो काम कर ले, लेकिन रवि जी कहते हैं कि पापा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो श्रोता साथियों, क्या सच में हमारे पास समय की कमी है? नहीं साथियों, समय की कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ प्राथमिकता की। क्योंकि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं ये हमें ही नहीं पता चलता। तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि समय का खर्च हम कहाँ कर रहे हैं। क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है? क्योंकि श्रोता साथियों, व्यस्त होना जरूरी नहीं है, सही काम में व्यस्त होना जरूरी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तो इस चीज का समय ही नहीं था, या पापा ये काम आपने करने के लिए बोला था, इस काम को करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचा। साथियों, हम देखते हैं कि एक छात्र जो है वो हमेशा ये कहता है कि उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, लेकिन वह रोज घंटों मोबाइल और टीवी पर समय बिताता है। एक दिन उसके शिक्षक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं था, तो तुमने ये काम कर कैसे लिया? क्या तुम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे? साथियों, उस दिन के बाद छात्र ने अपने समय का

हिसाब करना शुरू किया कि वो कौन सा समय कहाँ बिता रहा है। धीरे धीरे उसने अपने सही समय का उपयोग करना सीख लिया और कुछ ही समय बाद वह क्लास में श्रोता साथियों अव्वल आने लगा। दोस्तों, यही है समय की असली पहचान। हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास समय का सही उपयोग करने की चाबी है, यानी कि उसे पता है कि वह कैसे समय का सही उपयोग कर सकता है, कहाँ इसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कैसे कर सकता है, तो वो व्यक्ति श्रोता साथियों अपने जीवन में जरूर सफल होता है। क्योंकि हम वर्तमान में ये समस्या तो बहुत ज्यादा देखते हैं, खास करके हमारे बच्चों में हम ये देखते हैं साथियों कि अगर हम हमारे बच्चों को कहें कि बेटा ये काम कर लेना, तो वो कहेगा कि पापा मैं कल कर लूंगा। और कल जब हम उससे ये पूछेंगे कि तूने ये काम कर लिया, तो वो बोलेगा नहीं पापा, समय ही नहीं मिला। तो श्रोता साथियों, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के सामने कि मुझे समय नहीं मिलता, ये हम कह सकते हैं कि समय की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और किस काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि किस काम को करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है और किस काम को हम कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन में समय के सही उपयोग करने को प्राथमिकता देना चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा काम सही समय पर होना चाहिए और कौन सा काम करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मैं उसे बाद में करूं। क्योंकि दोस्तों, जो समय की कद्र करता है, समय उसे ही सफल बना देता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर बात करूं आज के हमारे युवाओं की, तो साथियों आज के युवाओं के लिए तो समय का सही उपयोग करना इतना जरूरी हो गया है कि बात ही कुछ और हो जाती है। क्योंकि यही समय उनके भविष्य को बदल रहा है साथियों। अगर अभी भी हमारे युवा साथी समय का सही उपयोग करना नहीं समझेंगे, तो हम कह सकते हैं साथियों कि हम आगे फिर तो समय के उपयोग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मेरा आपसे कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान के माध्यम से, कि हमें अपने जीवन में समय को प्राथमिकता देनी है, लेकिन उसमें भी सही समय क्या है उसकी भी पहचान करनी है। तो जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चली रही है साथियों, ये बातें मैं आगे भी करना चाहूंगी। आगे भी हम जानेंगे श्रोता साथियों कि समय का सही उपयोग करना हम कैसे सीखें, तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बहुत ही अच्छा विषय आपके साथ चल रहा है और गीत से पहले भी बातचीत हम कर रहे थे समय के सही उपयोग को लेकर। और गीत से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है समय के उपयोग को समझने की, समय के महत्व को समझने की, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युवाओं के लिए यही सही समय है जो उनके भविष्य को तय करेगा। साथियों, अगर युवा आज अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे दोस्तों, तो उनका कल उज्जवल होगा। लेकिन अगर वे भी समय को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो हम देखेंगे साथियों कि हमें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज का किया गया सही उपयोग ही कल की सफलता का आधार बनता है। श्रोता साथियों, तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि समय का सही उपयोग करना हर पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में अगर हम अपने बच्चों को बताते रहे कि समय का सही उपयोग करना क्यों जरूरी है, तो बचपन से उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम युवा साथियों को समझाएं कि समय कितना महत्वपूर्ण है, तो अगर वो इसी समय भी समझ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, समय का उपयोग करने की कोई उम्र नहीं होती। हर समय का सही उपयोग करना हम हर उम्र में सीख सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों सही समय निकल गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमें समय का सदुपयोग करना है, तो इसी बीच प्रश्न ये आता है कि समय का सही उपयोग करना हमें सीखना कैसे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि समय का सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हर दिन की एक योजना बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही सुबह आप ये तय करें कि आपको आज पूरे दिन में करना क्या है, यानी कि आप एक शेड्यूल बना लें कि इस समय पर आप ये कार्य करेंगे, उस समय पे आप ये कार्य करेंगे। इससे होगा क्या साथियों, इससे आपका समय भी बचेगा और आप हर काम को सही समय पर कर पाएंगे। दूसरी बात, जरूरी काम को आप प्राथमिकता दें साथियों, क्योंकि आपको करना क्या है कि पहले आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो कर लेना है। बाद में श्रोता साथियों, छोटे मोटे काम तो लगे रहेंगे। उसके बाद तीसरी बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग श्रोता साथियों जितना हो सके सीमित मात्रा में करना है। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल कहीं नहीं जा रहा है, समय जा रहा है, तो हमें समय का उपयोग करना है, मोबाइल का नहीं। समय का हिसाब भी रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दिन में समय कहाँ जा रहा है, किस काम में जा रहा है, इसका हिसाब होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर अपना समय व्यर्थ जाने दे रहे हैं और कहाँ पे आप सही समय का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, समय को नहीं जाने दे, खुद मैनेज करना सीखिए कि किस तरीके से आप समय का सदुपयोग करेंगे, समय को मैनेज करेंगे। साथियों, आप खुद ही सोचिए कि कितनी बार हम ये कहते हैं कि कल से शुरू कर लेंगे इस काम को, कितनी बार हमने अपने सपनों को भी टाल दिया श्रोता साथियों। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि कल कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज ही आता है। जो आज को खो देता है साथियों, वो कल को भी खो देता है। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे साथियों कि आज हमने जैसा कि जाना कि समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे दोस्तों, तो हमें अपने सपनों को साकार करने का समय भी मिल जाएगा। इसलिए साथियों, याद रखिए कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हर मिनट की कीमत आपको समझनी होगी, क्योंकि यही मिनट मिलकर जीवन बनाते हैं श्रोता साथियों। आज से ही अपने समय को पहचानिए। तो आज से ही श्रोता साथियों, अपने सही समय को पहचानिए, उसे सही दिशा में लगाइए और अपने सपनों को सच बनाइए। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि बातें जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, तो विदा मैं जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ कार्यक्रम में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में समय के महत्व को लेकर जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। और उन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर श्रोता साथियों, आप भी अपने जीवन में समय के महत्व को जरूर समझेंगे। तो जैसा कि बातें तो पूरी हो चुकी है, समय भी श्रोता साथियों अब हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायी विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया हैं, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जान ही पा रहे हैं कि हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है स्तनपान में स्वच्छता, स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से स्तनपान से पहले हाथ अच्छी तरह धोने हैं, माँ की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान उसे कैसे रखना है, शिशु को साफ वातावरण में स्तनपान कैसे कराएं, स्तनों की नियमित सही देखभाल कैसे करें, साथ ही पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध कैसे देना है, परिवार कैसे सहयोग करे, स्वच्छता और स्तनपान स्वस्थ भविष्य की नींव कैसे हो सकता है। ये ढेर सारी बातें कार्यक्रम में जरूर रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत एक बार फिर से करना चाहेंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है स्तनपान में स्वच्छता, स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को लेकर। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार अंजलि जी।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: अंजलि जी मेरा नाम नमिता कुलश्रेष्ठ है और मैं सिटी प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ नदी सुपरवाइजर के पद पर।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो जैसा कि हम 1 से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाते हैं और आज हम 6ठा दिन मना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि इस दिवस को मनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी।
1: अंजलि जी 1 से 7 अगस्त तक हम पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं और ये इसलिए जरूरी है कि माताओं को बेहतर स्वास्थ्य मिले, बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, जागरूकता बढ़े और साथ ही माताओं को पूरा पूरा समर्थन मिले स्तनपान के लिए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए ये स्तनपान सप्ताह पूरे अपने कहना चाहिए कि विश्व में मनाया जा रहा है और ये 120 देशों में सबसे पहले 1992 में मनाया गया था।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जन्म के 1 घंटे के भीतर ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना क्यों जरूरी होता है, जिसे पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसका क्या महत्व है।
1: जो 9 माह में हमारी गर्भवती माताएं पौष्टिक आहार खाती है ना, तो उससे उस जो पहले 1 घंटे का जो दूध होता है,
0: बिल्कुल,
1: उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और सबसे बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति उसमें आ जाती है। तो यदि हम ये बच्चे को पिलाते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि इसका महत्व 1 घंटे के अंदर ही है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम इसे 1 घंटे के अंदर पिलाते हैं तो बच्चे में रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती है और जो कि उसकी ता उम्र तक रहती है। तो ये बेहद जरूरी है कि जो भी बच्चे जन्म लें हम उनको 1 घंटे के अंदर माँ का पीला गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध अवश्य पिलाएं।
0: बिल्कुल मैम आपने सही कहा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग उस पीले गाढ़े दूध को फेंक देते हैं, तो उन लोगों को आप किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगी।
1: अंजलि जी इसमें बहुत जरूरी है कि हम माताओं को इस बारे में मोटिवेट करें और उनमें ये जागरूकता लाए और उनको पीले गाढ़े महत्व जो दूध है कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध है उसके महत्व के बारे में हम उन्हें बताएं और उनको समझाएं कि ये जो दूध है ये 1 घंटे के अंदर पिलाया जाता है। न केवल उन माताओं को समझाएं बल्कि उस परिवार को भी समझाएं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तब परिवार बहुत उत्सुक होता है और हर तरह की सावधानियों को बरतता है। तो ऐसे में जब हम परिवार से संपर्क करेंगे, परिवार को समझाएंगे, उस माँ को समझाएंगे, तो माता जरूर समझेगी और वो बिल्कुल, या जब उसका बच्चा होगा तो वो 1 घंटे के अंदर अपना पीला गाढ़ा दूध उस बच्चे को अवश्य पिलाएगी।
0: बिल्कुल मैम आपने सही कहा, लेकिन हम देखते हैं कि पहले के समय में हमारे दादा दादी और ये सब कहा करते थे कि बच्चा होते ही उसे कुछ शहद या कोई चीज चटाई जाती है और वो भी किसी एक इंसान के जरिए, जैसे कि उसकी बुआई उसको खिलाएगी, ऐसी कुछ चीजें मान्यता के तौर पर देखी जाती है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो बात करते हैं कि 6 महीने तक केवल और केवल बच्चों को माँ का दूध ही देना है।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये संदेश पूरे समुदाय में जाना चाहिए कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। किसी भी तरह का उसको पानी या उसको शहद या गुट्टी कुछ भी नहीं देनी चाहिए। और जो हमारी परंपरा है कि बुआ ही पिलाएगी या ऐसा है, तो अब धीरे धीरे अंजलि जी जागरूकता आ रही है। बस जरूरत है कि निरंतर इन संदेशों का प्रचार प्रसार होता रहे ताकि हमारा माताएं और हमारा परिवार जो समुदाय में रहते हैं वो जागरूक हो सके। और अब जागरूकता तीव्रता के साथ बढ़ रही है, जो चीजें पहले थी, जो परंपराएं पहले थी, जो मान्यताएं पहले थी, अब वो बहुत कम होती जा रही है, लेकिन प्रयास अभी भी जारी रहना चाहिए।
0: जी हाँ मैम, आपने सही कहा। तो यहीं अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ के दूध से बच्चे को कौन कौन से पोषण मिलते हैं और किस तरीके से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लाभ मिल पाता है।
1: अंजलि जी, जो माँ का पहला दूध है वो सर्वोत्तम आहार है। इसमें पूरी तरीके से सभी जो एक बच्चे के लिए जरूरी है 6 माह तक, वो सारे पौष्टिक तत्व, वो सारे कहना चाहिए कि सूक्ष्म पोषक तत्व, वो सभी इसमें शामिल है। और यदि ये दूध बच्चे को पिलाया जाता है तो बच्चे के

0: इसमें हमें महिलाओं को ये समझाना होगा कि जो माँ का दूध है उसमें 3/4 पानी है, अलग से पानी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि बच्चे को प्यास लगे या भूख लगे तो माँ उसको अपना दूध ही पिलाए, क्योंकि अगर माँ अपना दूध पिला देती है तो किसी भी तरीके से ऊपर से पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पानी हमेशा दूषित होता है, और यदि हम इतने नवजात इतने छोटे शिशु को यदि हम पानी पिला देते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि उसको उल्टी दस्त जैसी शिकायत हो सकती है, और यदि दस्त जैसी शिकायत बच्चे को हो जाती है तो फिर वो कुपोषण की श्रेणी में बहुत जल्दी आने की संभावना रहती है।
1: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवा रही हैं, और यही हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि बीच बीच में हम गीत संगीत के माध्यम से श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आपकी ही पसंद का एक प्यारा सा गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: बिल्कुल, और मेरी पसंद का जो गीत है वो आप बिल्कुल सुनाइए माताओं, मतलब पूरे हमारे जो श्रोता है उनको, कि माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है।
1: बिल्कुल मैम।

0: जैसा कि मैम अभी श्रोता साथियों ने आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत सुना है, और जैसा कि आज कार्यक्रम में बात भी हमारी इस विषय को लेकर ही चल रही है कि माँ और बच्चे का जो संबंध है भावनात्मक, वो किस तरीके से स्तनपान के माध्यम से ही हो पाता है। यही मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उनके स्वास्थ्य पर क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं।
1: देखिए अंजलि जी, माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको भी उसका बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है, और बच्चा दूध पी रहा है तो उसका तो स्वास्थ्य बेहतर हो ही रहा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो उनको इस तरीके से उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है कि एक तो जो स्तन कैंसर की एक बहुत बड़ी वैश्विक जो बीमारी हो रही है महिलाओं में,
0: बिल्कुल
1: वो चीज इससे बहुत कम हो जाती है। सेकेंड, जो उसका अंडाशय होता है वो सुरक्षित रहता है ना। तो ये दो चीजें हैं जो जिससे अगर माँ स्तनपान कराती है तो इससे माँ को लाभ मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: और बच्चे को लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि बच्चे को एक तो बच्चे की पोषण की आवश्यकताएं पूरी होती है, तो बच्चे को तो फिर बच्चे का तो भोजन है ही, तो बच्चे को तो लाभ ही लाभ है। लेकिन माताओं को ये जो उसने अंडाशय वाली बात जो मैंने कही और एक जो स्तन कैंसर की जो बात कही है, और दूसरा जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे क्या है कि बच्चे और माँ में एक अपनापन और एक जो भावनात्मक विकास होता है वो बहुत तेजी के साथ बच्चे के अंदर आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये लाभ है स्तनपान से।
0: जी बिल्कुल मैम, यही हम देखते हैं कि बहुत सी बार बहुत सी माताओं की दूध नहीं बन पाता है, तो अगर माताओं की दूध कम आ रहा है ऐसा उन्हें लगता है तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले बात है कि माँ को अगर नहीं दूध आ रहा है तब भी माँ को बच्चे को स्तनपान कराना है, स्तन से लगा के रखना है। यदि वो लगा के रखेगी, बराबर प्रयास करेगी, एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन तीसरी चौथी बार जब माँ का और बच्चे का भावनात्मक विकास कनेक्ट हो जाएगा आपस में तो वो दूध बनने लगेगा। कई बार क्या तो क्या होता है कि बच्चे को स्तन से गलत ढंग से बच्चा दूध को पीता है, उससे क्या होता है कि जो दुग्ध नलियां है उनमें बराबर प्रभावित नहीं हो पाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में बच्चे की सही स्थिति होनी चाहिए दूध पिलाने की।
0: बिल्कुल मैम।
1: और जो उसका जो और वो जो एरोला है वो पूरी तरीके से बच्चे के मुंह में होना चाहिए। तो बच्चा जब शक करेगा तो वो जो दुग्ध नलियों में दूध आएगा और माँ बच्चे को दूध पिला पाएगी। तो इसमें दो मेन कारण है, एक तो निराश नहीं होना, अगर नहीं आ रहा है तब भी बच्चे को दूध पिलाने की का बराबर प्रयास करना है, और सेकंड अब जो स्तनपान है उसकी बिल्कुल सही स्थिति होनी चाहिए। यदि सही स्थिति में बच्चा दूध स्तनपान करेगा तो माँ के अंदर स्तनों में दूध बनेगा और बच्चा दूध पी सकेगा।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि सही तरीका कौन सा है, बच्चे को कौन सी स्थिति में दूध पिलाना चाहिए और कौन सी गलतियों से हमें बचना है।
1: देखिए सबसे पहले तो माँ बैठ जाए, बैठे और बैठने के बाद दूध पिलाने में बच्चे को बिल्कुल सीधा रखे, यानी कि उसका सिर पीठ और उसके जो पैर है वो सीधे रहे। दूसरा, उसका जो पेट है बच्चे का और माँ का जो पेट है वो आपस में सटा हुआ होना चाहिए, और जो माँ की जो हाथ है वो पीछे से उसकी पीठ को सपोर्ट करना चाहिए। और चौथी बात है कि जो बच्चे का जो मुंह है उसमें एरोला का जो है वो पूरा भाग वो अंदर होना चाहिए, बच्चे का माँ का जो एरोला है वो बच्चे के मुंह में पूरी तरीके से होना चाहिए।
0: जी जी।
1: बच्चे का जो मुंह है वो पूरी तरह खुला होना चाहिए और नीचे का होते वो बाहरी तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर ये स्थितियां होंगी तो निश्चित तौर से दूध बहुत अच्छे से आएगा और बच्चे का पेट भरेगा। और यही स्थिति है, सेकंड ये है कि बच्चे को दूध दोनों स्तनों से पिलाना है और एक स्तन से 15 से 20 मिनट तक पिलाना है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि पहले शुरुआत 5 मिनट में क्या होता है कि पानी आता है ना। कई बार हमने देखा है माँ 5 मिनट में इधर करती है और 5 मिनट में उधर करती है दूसरे स्तन से, ऐसा नहीं, लगभग 15 मिनट तक एक स्तन से पिलाए फिर 15 मिनट बाद दूसरे स्तन से पिलाए। और ये एक और भ्रांति है हमारी माताओं में कि दूध कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा।
0: जी जी।
1: तो जितना बच्चा दूध पिएगा उतना ही ज्यादा दूध स्तनों में बनेगा, इसलिए माँ को इस बात से बिल्कुल भी इस बात से परेशान नहीं होना है। तो एक स्पून से 15 मिनट तक पिलाए बच्चे को, फिर दूसरे स्तन पर 15 मिनट पिलाए ताकि दोनों में उसका पेट अच्छे से भर सके।
0: बिल्कुल मैम, तो यही मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे को कितनी देर में दूध पिलाने की जरूरत है, क्योंकि जो नई माताएं होती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, या वो ना समझ, रिपीट, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें कितनी कितनी देर में अपने बच्चे को दूध पिलाना है। बहुत से बार ऐसा होता है कि बच्चा सोया है और जब वो रोने लगता है तब दूध पिलाया जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि हर 2 घंटे में हमें बच्चे को दूध पिलाना है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
1: अंजलि जी, मैं इस बारे में बोलूंगी कि दूध पिलाने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। बच्चों को जब भी भूख लगे, बच्चा जब भी रोएगा, माँ को उसको दूध पिलाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, और अगर महिलाओं के स्तनपान कराते समय माँ को अगर दर्द, सूजन या निप्पल में घाव हो जाए तो क्या करना है उन्हें?
1: ऐसी स्थिति में अपना दूध निकाल लेना चाहिए कटोरी में और उसको सुरक्षित रख देना चाहिए, और जब भी बच्चे को भूख लगे ऐसी स्थिति में उसको चम्मच से दूध पिलाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि यदि स्तन में घाव है या कटाव हो गया है तो बच्चा तो शक करेगा लेकिन माँ के लिए पीड़ादायक होगा।
0: जी जी,
1: तो ऐसी स्थिति में माँ को यही करना है, तो अपने स्तन से दूध निकाल ले, परिवार उसमें उसका सहयोग करे और उसको सुरक्षित रख दे, और जब भी बच्चे को भूख लगे माँ उस बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन 24 घंटे बाद उस दूध का इस्तेमाल नहीं करे।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से महिलाओं को इस स्थिति में ध्यान रखने की जरूरत है, यही मैम बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार बच्चा जो है वो जल्दी डकार भी नहीं लेता है, और रात को जब महिला उसे दूध पिलाती है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी तक डकार नहीं ली है, नींद बाधित हो रही है, तो वो उसे आड़ा सुला देती है। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी और डकार दिलाने का सही तरीका क्या है?
1: डकार आना जरूरी होता है अंजलि जी, क्योंकि कई बार हम बड़ा बड़ा पेट महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना, तो बच्चा भी ऐसा महसूस करता है जब माँ उसको दूध पिला ले तब वो उसको अपने कंधे के सहारे छाती से लगा के कंधे के सहारे लगा ले, और धीरे धीरे उसकी पीठ पे अगर वो थपकी देती है हल्की हल्की सी तो बच्चे को डकार आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और डकार आने के बाद वो काफी आराम फील करता है बच्चा भी, क्योंकि आपने देखा होगा हम बड़े भी जब खाना खा लेते हैं थोड़ा सा उनके वॉक करते हैं तो हमें एक डकार आती है।
0: जी जी,
1: तो हम भी एक अच्छा फील करते हैं, ठीक इसी तरह से बच्चे के साथ है, तो डकार दिलवाना भी जरूरी होता है। तो उसका सही तरीका यही है कि छाती से लगा के कंधे पर उसको लगा ले और पीठ के पीछे हल्की हल्की थपकियां लगाए 4-5 मिनट में बच्चे को डकार दे।
0: बिल्कुल, तो मैम यही जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उन्हें अपने खान पान में किन किन चीजों को शामिल करना है और कैसे वो इस दौरान अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि स्तनपान कराने से महिलाओं में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, तो उन्हें क्या करने की जरूरत है?
1: बिल्कुल अंजलि जी, उनको कैल्शियम युक्त खाना खाना चाहिए, आयरन भोजन लेना चाहिए, अपने खाने में ज्यादातर अंकुरित अनाजों का इस्तेमाल करना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, लाल पीले जो फल होते हैं उनका अधिकतर वो सेवन करें, है ना, तो इस तरह की, और कैल्शियम युक्त भोजन में वो दूध का भी 1-1 गिलास दूध उसको पीना ही चाहिए ताकि बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कैल्शियम युक्त भोजन, आयरन युक्त भोजन, फाइबर वाले खाने, लाल पीले फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, दही इनका इस्तेमाल करेगी तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी डाइट लेगी, तो निश्चित तौर पर उसको दूध अच्छे सा बनेगा और बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाएगी।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो बच्चे के लिए स्तनपान को निरंतर कैसे बनाकर रख सकती है, क्योंकि अभी के समय में हम देखते हैं कि हर महिला घर से बाहर निकलकर काम करती है, और इस स्थिति में उन्हें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपना दूध वो निकाल कर रख सकती है कटोरी में या किसी गिलास में, उसको सुरक्षित रखा जाए, ढककर रखा जाए, है ना, और पीछे से जो परिवार है, परिवार में सासू माँ है, ननद भी है, जेठ जेठानी भी है, है ना, ससुर भी है, तो वो सभी उस बच्चे का ख्याल रखे और बच्चे को जब भी भूख लगे तो वो गिलास में से, कटोरी में से चम्मच चम्मच बच्चे को दूध पिला दें तो इससे क्या होगा कि माँ कामकाज भी कर पाएगी अच्छे से, इस बात से निश्चिंत भी रहेगी कि भाई घर पे पूरा परिवार है और परिवार भी बच्चे को समय समय पर जब भूख लगती है उसको दूध पिला रहा है। इससे बच्चे की जो पौष्टिक आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी और माँ भी अपना कामकाज अच्छे से कर पाएगी।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आप कार्यक्रम में हमें ढेर सारी जानकारी से अवगत करवा रही हैं, यही अब मेरा अगला सवाल है कि परिवार के सदस्य महिला को इन सारी चीजों में कैसे सहयोग करें, क्योंकि ये जो समय होता है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अलग होता है, इस समय महिलाओं के मूड भी स्विंग होते हैं, तो ऐसे में परिवार का सहयोग महिलाओं को कैसे मिलना चाहिए?
1: इसमें ये है कि सबसे पहले बच्चा पूरे परिवार के लिए ही है, बच्चे का हर सदस्य के साथ एक रिश्ता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो सबसे पहले तो यदि माँ काम का दिए तो जैसे मैंने बताया कि भाई वो दूध को अपने रखकर जाए और परिवार उसको समय समय पर पिलाए।
0: जी जी।
1: सेकंड, जब माँ काम में लगी हुई है ठीक है और बच्चा रो रहा है तो ऐसे में परिवार को चाहिए कि वो माँ को थोड़ा सा समय दे, उसको काम से कार्य से मुक्त करे ताकि माँ बच्चे को स्तनपान करा सके।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही जब माँ काम कर रही है तो बच्चे की देखभाल कोई ना कोई परिवार का सदस्य करे, तो इससे क्या है माँ को एक समर्थन मिलता है परिवार का।
0: बिल्कुल,
1: उसको एक भरोसा होता है परिवार पर, उसका एक विश्वास और उसका एक कहना चाहिए कि अपने परिवार के प्रति एक अपार विश्वास, एक भरोसा वो जीतती है और साथ में परिवार भी देखता है कि उस बच्चे का ख्याल रखना केवल माँ का ही ड्यूटी में नहीं आ रहा। उस वक्त माँ को ये लगता है कि नहीं, पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ है और मेरे बच्चे को पूरे परिवार का प्यार और समर्थन मिल रहा है।
0: बिल्कुल मैम,
1: तो इस तरीके से परिवार सहयोग कर सकता है और माँ के अंदर भी इस तरह की सुंदर भावनाओं का विकास होगा, तो निश्चित तौर पर माँ परिवार और बच्चे का एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के अंदर आएगा।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे समाज में स्तनपान को लेकर कौन कौन से भ्रम और गलत धारणाएं फैली हुई हैं, तो आप हमारे श्रोता साथियों को सही जानकारी से अवगत करवाइए।
1: भ्रम तो ये है कि बच्चे को पहले 4 दिन तक दूध नहीं पिलाते थे, हालांकि अब ये भ्रांतियां बहुत कम स्तर पर रह गई है कि नहीं पिलाना चाहिए, ये सही दूध नहीं होता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं तो वो हमारे समाज में है कि नहीं, लेकिन इन भ्रांतियों को भी इस तरह के उदाहरणों से हमारी जो कार्यकर्ता सहायिका है, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, वो माताओं को बता रहे हैं कि जैसे बिल्ली है जन्म होते ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है।
0: बिल्कुल,
1: जो भी जानवर है जन्मते ही बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो फिर हम इंसान क्यों नहीं, हम तो उनसे समझदार है।
0: बिल्कुल
1: है ना, और फिर कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध है, तो इस तरह की उदाहरण देकर उन माताओं को समझाया जा रहा है कि ये देखने जैसा नहीं है, क्योंकि जब गाय और भैंस के बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो फीस होता है ना, उसका इस्तेमाल हम कितने बड़े चाप से करते हैं, कहते हैं कि बहुत पौष्टिक है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसी तरह माँ का जो पहला दूध है वो भी इससे भी ज्यादा कहीं पौष्टिक है, तो माँ को चाहिए कि वो अपना पहला दूध पिलाए। तो जो उनकी भ्रांतियां थी इन चीजों को लेकर कि अच्छा नेता ये गंदगी होती है या गंदा होता है विषाक्त होता है, इस तरह की धारणा थी तो इसलिए वो फेंक देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगा है और खास तौर से महिलाएं अब अवेयर हो रही है, क्योंकि आज की महिलाएं पढ़ी लिखी है ना, जो एजुकेशन लेवल है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज की महिलाएं इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और ये बच्चे को लेकर बहुत सजग है और बहुत कहना चाहिए कि वो इनको परवाह है कि बच्चे को किस तरीके से हमको बड़ा कर लें।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी, महिलाएं जब स्तनपान कराती हैं तो उन्हें स्वच्छता का कैसे ध्यान रखने की जरूरत है?
1: स्वच्छता का ध्यान इस तरीके से रखा जाता है कि जब भी स्तनपान कराए तो अपने स्तन को एक बार पोंछे, अगर सर्दी का टाइम है तो हल्के गर्म पानी से वो तौलिया वगैरह जो होता है उससे उसको वॉश कर लें और अपने स्तन को साफ कर लें। जब भी बच्चे को दूध पिलाए तो वो अपने हाथों को भी साफ करें।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे को स्वच्छ हाथों से वो अपने स्तन से लगवाए, साथ में वो परिवार को भी इस बात से बोले कि भाई जब भी बच्चे को वो गोद में ले तो वो उसको जो स्वच्छ हाथ है उनसे ही वो एक बार हाथ धोए उसके बाद बच्चे को गोद में ले।
0: बिल्कुल,
1: एक किसी भी तरह की जो बहुत ही प्यार में हम बच्चे का मुख चूमते हैं तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। यदि परिवार में या माँ को कोई खांसी या कुछ ऐसी चीज है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि अपने मुँह को ढककर ही वो खांसी वगैरह खाते, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से हाथों की स्वच्छता और स्तन की स्वच्छता को लेकर।
0: बिल्कुल मैम। मैम अब यही मैं जानना चाहूंगी कि किन परिस्थिति में महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।
1: यदि स्तन में किसी तरह की पीड़ा हो या माँ को कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना हो तो ऐसी कुछ जटिल संभावनाएं या फिर स्तन में प्रयास करने के बाद भी दूध नहीं आया है ऐसी कुछ जटिल संभावनाओं के होते हुए तुरंत हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए और उनसे हमको अपनी पूरी तरीके से जो भी चीज है उसको डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि हमको सही परामर्श मिल सके कि हमें क्या करना है।
0: जी मैम, तो जैसा कि आपने स्तनपान को लेकर ढेर सारी जानकारी से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि 1-7 अगस्त स्तनपान सप्ताह है, ये तो सप्ताह के रूप में हम मनाएंगे और समाज में हम इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन अभी मैं उन माताओं को उन महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी कि बच्चे को 1 घंटे के अंदर अपना काढ़ा पीना कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध जरूर पिलाए क्योंकि ये बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करेगा और बच्चा बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे स्तनपान कराने से और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: मेरा समुदाय में रहने वाली हमारी माताओं के लिए संदेश है।
0: बिल्कुल मैम, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया। जैसा कि श्रोता साथियों अभी हमारे बीच में कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे जिनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें बच्चों को स्तनपान कराना है और स्वच्छता का कैसे ध्यान रखने की जरूरत है। श्रोता साथियों, माँ का दूध शिशु के लिए सबसे सुरक्षित और संपूर्ण आहार होता है लेकिन स्तनपान के साथ स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। स्तनपान कराने से पहले माँ हाथ को साबुन से और साफ पानी से धोए, स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, शिशु को हमेशा साफ और आरामदायक वातावरण में स्तनपान कराएं। यदि किसी कारणवश दूध निकाल कर पिलाना हो तो केवल साफ और कीटाणु रहित बर्तन का ही उपयोग करें। पहले 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही हमें देना है, इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। याद रखिए श्रोता साथियों, स्वच्छता केवल माँ की नहीं पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार का सहयोग माँ को आत्मविश्वास देता है और स्तनपान को सफल बनाता है। तो कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हुआ है एक प्यारे से गीत के साथ में

साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से विषय विशेषज्ञ के माध्यम से जाना कि स्तनपान में स्वच्छता कैसे बनाकर रखनी है और माँ और शिशु का गहरा संबंध कैसे है। श्रोता साथियों, स्तनपान के दौरान स्वच्छता अपनाना केवल एक आदत नहीं बल्कि शिशु की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए छोटी सी लापरवाही भी संक्रमण का कारण बन सकती है। साफ हाथ, स्वच्छ कपड़े और साफ वातावरण शिशु को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। श्रोता साथियों, स्तनपान कराने से पहले माँ को हमेशा साबुन साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। दिन भर हम कई वस्तुओं को छूते हैं जिन पर कीटाणु हो सकते हैं। यदि बिना हाथ धोए शिशु को गोद में ले लिया जाए या स्तनपान कराया जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हाथों की स्वच्छता सबसे पहला और सबसे आसान बचाव है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि स्तनपान कराने वाली जो माँ है उसे भी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और शरीर को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में स्तनों को बार बार साबुन से धोने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इससे त्वचा सूक्ष्म हो सकती है और नियमित स्वच्छता और साफ सफाई पर्याप्त महिलाओं को रखनी है। शिशु को हमेशा साफ, शांत और आरामदायक स्थान पर स्तनपान कराने की जरूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई माता शिशु को स्तनपान करा रही है और वो अगर शोर शराबे वाली जगह पर अगर उसे स्तनपान कराएगी तो बच्चा ठीक तरीके से दूध नहीं पी पाएगा क्योंकि वो इधर उधर की बातें सुनने में अपना ध्यान लगाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें बच्चों को स्तनपान कराते समय शांत वातावरण दिखना बहुत ज़रूरी है। जब हम शांत वातावरण में बच्चों को स्तनपान कराते हैं तो बच्चे पेट भरकर अपना दूध पी लेते हैं। इसी के साथ जन्म से 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुटी या अन्य कोई भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। माँ का दूध ही बच्चे की सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है और उसे संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। श्रोता साथियों, यदि किसी कारण से माँ को दूध निकाल कर रखना या पिलाना पड़े तो साफ और कीटाणु रहित बर्तन का हमें उपयोग करने की जरूरत है। स्तनपान केवल श्रोता साथियों बच्चों के अधिकार नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य जीवन की सबसे मजबूत शुरुआत है। जब इनके साथ स्वच्छता भी जुड़ जाती है तो यह माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का आधार बन जाती है। साफ हाथ, स्वच्छ वातावरण, माँ की व्यक्तिगत स्वच्छता और परिवार का सहयोग, ये छोटे छोटे कदम बच्चे को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हर माँ को सम्मान, सहयोग और सही जानकारी देंगे ताकि हर शिशु को सुरक्षित, स्वच्छ और सफल स्तनपान का अधिकार मिल सके। स्वच्छता अपनाएं, स्तनपान को बढ़ावा दें। स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु के साथ स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत UP से। फिल्म का नाम है वारिस, गीत के बोल ही मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलेज जी डिकिस्ट्रो। इस गीत के अनुरोध करता है जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरा तबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। फिल्म का नाम है वारिस। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, फरमाइश का पहला गीत तो मैंने आपको सुनवा ही दिया है, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजरडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत के बोल हैं चांद छुपा बादल में। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मानु शानू, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला जी खटक। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रही हैं सुरेश डोमिन, शालिनी जी डोमिन। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोली और प्रभा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चांद छुपा बादल में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रायगढ़ बिहार से। फिल्म का नाम है सजना, गीत के बोल हैं मेरा दिल भी कितना पागल है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल जी उमा। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, राकेश ताई जी डुमराव से जुड़ रहे हैं, लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतीत जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे बक्सर शहर से फातिमा नाज, बीबी अंसारी और डब्ल्यू जी अंसारी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरा दिल भी कितना पागल है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने और फिल्म का नाम है सजना। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू और अलका जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मेरा दिल भी कितना पागल है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है डर, गीत के बोल हैं जादू तेरी नज़र। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से जुड़े हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायरा सुरेशी। इस गीत की अनुरोध करता है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रही हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, नमन, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, सिमरत और मन्नत जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं दिल्ली से राज खोरवाल, रानी खोरवाल और प्रकाशी खोरवाल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जादू तेरी नज़र। फिल्म का नाम है डर और इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पुराना तालाब डुमराव से। गीत के बोल हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आसमान राज अंसारी, वल्लीउल्लाह अंसारी, शबनम बानो जी। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनिजा और बिमला जी अनिजा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णा नामदेव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं छन्नूला श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है जो जीता है वही सिकंदर बनता है। गीत के बोल हैं, पहला नशा पहला हुआ। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और साधना जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। बिहार कॉलोनी दिल्ली से जुट रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश रामटेके जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह, प्रजापत श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। अंबाला हरियाणा से जुड़ रही रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश रावल, प्रियंका नमन, गुरशब्द, गुरकीरत सिंह राहुल और मन्नत जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, पहला नशा पहला हुआ। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और साधना जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। गीत के बोल है नीले नीले अंबर पे और इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अब्दुल लोहेवाला शाहिद शेख शाहिल शेख अब्दुल्ला जी शेख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं संग मुंगी सी बाबा साहेब कणकर साखरबाई कणकर परमेश्वरी रोहिणी श्रावणी ईश्वरी और कणकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे सलार पेलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी जुड़ रहे हैं। मराठवाड़ा से जुड़ना चाह रहे हैं समयद मशरूम साइना हसन अक्सानाजिया आफिया और इब्राहिम जी और रामभाव तानवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान इरशाद अरमान इरशाद नवीद इशराज अजरा चबुस्सम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी नौरीन अंसारी आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं नीले नीले अंबर पर। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक, गीत के बोल हैं ये मेरे हमसफर। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बालनी चावला, आनंद राठौर, श्रीमती गिरिजारी राठौर, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बीबी वेदी जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्रीमती जेवंती केवट। और जगतपुर बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम जी नायडू। सनावत से जुड़ रहे हैं मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इसाक जी और बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, पीबी कुलेश जी और बिरजू जी। भीड़ शहर से और भी श्रोता साथ जुड़ रहे हैं जयश्री महलेत्री, कविता, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुथले जी और मंजूश्री जी और मीरा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक, गीत के बोल हैं ए मेरे हम सफर। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों के फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोह का बलाई सी। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजित कुमार जंगेल, आयुषी जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। इस गीत के अनुरोध करता है जमशेदपुर से हरसिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी जी भाटिया। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जोन टिकी स्टोर, रोजी टिकी स्टोर, पल टिकी स्टोर, विलेज टिकी स्टोर। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेघाजी मस्किन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और आज भी ये सिलसिला जैसा कि सुबह 11 बजे से श्रोता साथियों हमारा आपके साथ बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों, बिना देरी किए फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है आकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दोस्तों तहलका। गीत के बोल है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू जी और अनुराधा पोडवाल जी ने। फरमाइश करता आकोट महाराष्ट्र से हैं नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल, सविता पाटिल, बालकुटा पाटिल और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ रहे हैं हमारे बीच में जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। कोका बिलास से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरल जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल। सुगरी कला से अमित शाकुन, औशिका अंजलि जंगेल। जुड़ना चाह रहे हैं बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सालिक अली खान, सारिक अली खान। घाटोल से जुड़ रहे हैं हंसराज जी, विकास, वीरेश चौहान जी, मिथिलेश, वीरेंद्र, देवेंद्र कटारा जी, संदीप चौहान जी, गणेश लाल जी, रामेश्वरी, अवधेश सुंदरलाल, दीपक कुमार जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल हैं कबूतर जा जा। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर जी और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। फरमाइश करता है, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी हैं तलवाड़ा से अवधेश जी, सुंदरलाल, दीपक कुमार, अनुप चौहान, मेघराज मीणा जी, निकिता शर्मा जी। बड़ोदिया से जुड़ रहे अरविंद, राजेश शर्मा, राजकुमार जी। गणपतपुरा से हैं महेंद्र, इमरत, वीरेंद्र, शैलेंद्र, सत्यम प्राणी जी और सुरेंद्र मीणा जी। देवेंद्र प्रजापत, अभिनव, दयाल शर्मा जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में पन्नालाल जी, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत, मनोहर हनुमंत, ओम शंकर रावत, सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल, संतीश पांडे जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कबूतर जा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है रायबरेली से, जुड़ना चाह रहे हैं। फिल्म का नाम है श्रुदा साथियों। राजा गीत के बोल हैं इस जहां की नहीं। इस गीत को आवाज़ दी नितिन मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, साथी जुड़ रहे हैं हमारे बीच में। रायबरेली से मेघराज मीणा जी, सतीश पांडे जी, विशाल जी, दिनेश चंद्र, राधेलाल जी, सीताराम जी, ओमकार रावत जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, बंटी प्रजापत जी, अभिषेक कटारा जी, अनिल डामोर, सुरेंद्र चौहान, श्याम सुंदर शंकर जी, दीपचंद प्रकार, हरिशंकर, दयाराम प्रजापति जी और हरेंद्र कुमार जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्त चित्तौड़ से जुड़ना चाह रहे हैं निकिता शर्मा जी, अरविंद राजेश शर्मा जी, राजकुमार जी, नरेश चुमार चौहान जी, मुकेश शर्मा जी, महेंद्र इमरत, वीरेंद्र, शैलेंद्र, सत्यम प्राणी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं इस जहां की नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम, गीत के बोल हैं बोलना हल्के हल्के। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, बांसवाड़ा से हैं पन्नालाल, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, मंटी प्रजापत, मनोहर, हनुमंत, ओमकार रावत जी, सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा जी सूरपुर से जुड़ रहे हैं, दिनेश चंद्र घाटोल से हैं, विशाल, संतोष पांडे और मेघराज मीणा जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, सियापुर से हरिंद्र कुमार, दयाराम प्रजापति, हरिशंकर, प्रकाश दीपचंद्र जी, शंकरलाल जायसवाल, कृष्णलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, सुंदरेंद्र चौहान, अनिल कुमार, अभिषेक कटारा कुशलगढ़ से जुड़ रहे हैं, हरिचरण कुमार जी और महेंद्र डामोर सीताराम जी ये बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं श्रोता साथी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जिवेम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं बोलना हल्के हल्के। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
2: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता,
1: तबर्रुक मिलता है। मेरी इबादत

0: रोके जमाना तुमको, रोके खुदाई तुमको, आना पड़ेगा।
1: ताज
2: हुमायूं का मकबरा।
1: हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,
2: ना नफा ना नुकसान, ना गुना ना सवाब, बस बेशुमार मोहब्बत। मुझसे शादी कर लो। वाकई।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, बड़ोदिया से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी बड़ोदिया से, बंटी प्रजापत जी, रमेश प्रसाद, रविशंकर गुप्ता जी, जसवंत कुमार पन्नालाल जी, राधेलाल सीताराम और ओमकार रावत जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सियापुर से दयाराम प्रजापति, प्रकाश, दीपचंद्र, शंकर, श्याम सुंदर, सुरेंद्र चौहान, अनिल डामोर जी, अभिषेक कटारा, हरिचरण कुमार, महेंद्र डामोर, सीताराम जी। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, बांसवाड़ा से ही हैं देवेंद्र वीरेंद्र कुमार, अभिषेक जैन जी,

संदीप जैन और दीपक कुमार जी, रतन कुमार, प्रमोद प्रजापति जी, सोरपुर से श्रोता साथी जोड़ रहे सीताराम जी, केशव प्रसाद, लाला राम, दिनेश कटारा, सुरेंद्र, अरुण जी और अजय कुमार जी, प्रेम डामोर, मेघराज मीणा जी, शैलेश मीणा जी, मेघराज मीणा जी, रायबली बरेली से हैं श्यामलाल जी, सतेंद्र राम सेवक, राकेश राम सहाय जी, कुशलगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं भोला भाई प्रजापत, अखिलेश जी, संतोष कुमार, आनंद भैयालाल जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये फरमाइश हमारे बीच आई है मटोला मधुबनी बिहार से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों तुमसा नहीं देखा। गीत के बोल हैं भीड़ में तन्हाई में। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में लखन लाल जी, रामस्वरूप कुमार जी, अभिषेक वर्मा, हेमंत टेलर, नरेश चौहान, अजित कुमार, मलखान जी। इसी बीच पाड़ीकला से जुड़ना चाह रहे हैं मनोज कुमार, अजय प्रजापत, राकेश पटेल, राकेश कुमार जी, मेघराज मीणा जी और अमर सिंह श्यामलाल जी। घाटोल से जुड़ रहे हरिश्चंद्र प्रजापति, खुशीराम जैन, हरिमोहन मीणा जी, मनोज कुमार जी, रोशन कुमार जी, इम्तियाज कटारिया जी, भावना जैन, आशा देवी, अभिषेक भट्ट और सत्येंद्र कुमार जी। तेजपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हीरालाल प्रजापति, सत्येंद्र प्रजापति, इम्तियाज जी, मेघराज मीणा, संदीप रामस्वरूप जी, लक्ष्मण चौहान, विक्रम सिंह, सुरेश नायक जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खुर्द से चारवी हरजेड जी और नरेश चौहान, हरिप्रसाद, प्रेम नारायण, मेघराज मीणा, लखनलाल मीणा जी, गमंडी लाल जी, रविंद्र कुमार जी। और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, दिलीप कुमार, रविजय जैन, अर्जुन निनामा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं भीड़ में तन्हाई में। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश का गीत है वसीम महाराष्ट्र से आया है साथियों। फिल्म का नाम है विवाह। गीत के बोल हैं दो अनजाने अजनबी। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से।

राष्ट्र विठ्ठल सुरेश सुषमा सुरदे पद्मश्री से मायरा शिरोसे जी, जुड़ना चाह रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से और भी दोस्त जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू जी, गनगोला दाता गंज से हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकिरत, सिमरन, मन्नत, गुरसब्दी सिंह राहुल, विजेंद्र कुमार जयजान। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दो अनजाने अजनबी। आपको बताना चाहूँगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी, जी।
0: हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए,

0: और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
2: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिमी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर एक श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है।
0: बिल्कुल,
1: विषय है श्रोता साथियों, स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ना चाहता है कशिश। कोई दोस्तों के बीच खुशियां ढूंढता है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी पहचान खोजता है, तो कोई दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा रहता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि यदि कुछ समय केवल अपने साथ बिताया जाए तो वो भी उतना ही सुखद और सुकून देने वाला हो सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि जागृति जी अपने गीत से पहले बताया था हमारे युवा साथियों को कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोस्तों के बीच खुशियां ढूंढते हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया में अपनी पहचान खोजते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि कुछ समय कभी हमने अपने साथ बिताया है, यानी कि मी टाइम हमारे पास है या नहीं। अगर आपको बताऊं श्रोता साथियों, तो स्वयं से जुड़ना सबसे बड़ा परिचय होता है। यानी कि दोस्तों, हम अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, लेकिन सबसे कम समय हम स्वयं को समझने में लगाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब हम अपने साथ समय बिताते हैं जागृति जी, तब हमें अपनी क्षमताओं, हमारी कमियां, सपनों और इच्छाओं का एहसास होता है, और यही आत्म पहचान हमें जीवन की सही दिशा चुनने में मदद करती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि युवावस्था में अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि साथियों, सबसे जरूरी होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने।
1: बिल्कुल कशिश, अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अकेले रहना दुखद है, लेकिन सच ये है दोस्तों के अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है।
0: जी जी।
1: अकेलापन मजबूरी हो सकता है, लेकिन एकांत हमारी पसंद हो सकता है। एकांत हमें सोचने, सीखने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: कई महान वैज्ञानिकों, साहित्यकार और कलाकारों ने अपने जीवन के श्रेष्ठ विचार एकांत में ही खोजे हैं। हम देखते हैं कशिश कि जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब दूसरों की स्वीकृति का इंतजार कम हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: युवा जीवन में कई बार असफलताएं हमें मिलती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास हमारे अंदर है, तो वही असफलता आगे बढ़ने की प्रेरणा भी बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: अपने निर्णय स्वयं लेना, अपनी गलतियों से सीखना और लगातार आगे बढ़ना ही आत्मविश्वास की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर मानसिक शांति को लेकर हम बात करें, तो जैसा कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है।
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार तुलना की आदत ने हमारे मन की शांति को प्रभावित किया है साथियों। ऐसे में यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकाले, शांत वातावरण में बैठे, गहरी सांस ले, कोई अच्छी पुस्तक पढ़े या अपने मन की बातें डायरी में लिखें दोस्तों, तो इन सभी चीजों से हमारा मन हल्का महसूस होता है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, मानसिक शांति सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, हम देखते हैं कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनने का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं का साथ देना सीख जाता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है, बल्कि समाधान खोजता है। ऐसे लोग जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही जब हमारा मन शांत होता है साथियों, तब हमारे मन में नए विचार जन्म लेते हैं। यदि हम हर समय मोबाइल, टीवी या शोर शराबे में व्यस्त रहेंगे, तो हमारे भीतर की रचनात्मकता दब जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय आप निकालें, उसमें आप चित्र बनाइए, कविता लिखिए, संगीत सुनिए, पौधे लगाइए या प्रकृति के बीच टहलने जाइए। जब आप श्रोता साथियों ये जो छोटे छोटे पल अपने जीवन में बिताएंगे, तो ये आपको नई ऊर्जा और नई सोच की ओर लेकर जाएगा।
1: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज का युवा सबसे अधिक समय स्क्रीन के सामने बिताता है, यह हम सभी जानते हैं कशिश। दूसरों की सफलता देखकर वो कई बार निराश भी हो जाते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन याद रखिए युवा साथियों, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन हमेशा वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक जीवन तो हमारे सामने है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों से आमने सामने मिलिए, और सबसे महत्वपूर्ण, समय के साथ भी कुछ पल बिताइए। अगर हम स्वयं से खुश नहीं है, तो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है कशिश, वही दूसरों का सम्मान करना भी जानता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए पहले स्वयं से प्रेम करना सीखिए, स्वयं को स्वीकार कीजिए और अपनी कमियों को सुधारिए और अपनी खूबियों को पहचानिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम बातें हमारे युवा साथियों से कर ही रहे हैं कि स्वयं के साथ समय बिताना भी सुखद हो सकता है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम जान पा रहे थे कि किस तरह से स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट केवल अपने लिए निकालिए। मोबाइल से आप दूरी बनाइए, अपने सपनों के बारे में जरूर सोचिए।
1: बिल्कुल।
0: अपने लक्ष्य को लिखिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, प्रकृति के बीच भी समय बिताइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि दोस्तों जीवन में परिवार, मित्र और समाज का साथ अनमोल होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सबसे स्थायी और सच्चा साथ हमारा अपना ही है। जब हम स्वयं को समझते हैं, स्वयं पर विश्वास रखते हैं साथियों, और स्वयं का सम्मान करते हैं, तब जीवन की कठिन राहें भी हमें आसान लगने लगती हैं। याद रखिए युवा साथियों कि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। ऐसे में हम सभी को हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालना होगा, अपने मन की बात को सुनना होगा, अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा साथियों, और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना होगा।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तब सबसे पहले स्वयं के साथ होते हैं।
1: जी जी।
0: और जीवन की अंतिम यात्रा में भी स्वयं ही हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं।
1: जी हाँ।
0: फिर भी विडम्बना ये है कशिश कि हम पूरी दुनिया को जानने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं को जानने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। वास्तव में श्रोताओं, जिस दिन हम स्वयं का साथ पसंद करना सीख जाएंगे, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा सुंदर अध्याय शुरू हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जीवन की सबसे सुंदर यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की है।
1: जी
0: जो
1: हाँ।
0: व्यक्ति अपने भीतर की शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से जुड़ जाता है, उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से विचलित नहीं कर पाती। इसीलिए आइए प्रतिदिन कुछ पल अपने स्वयं के साथ जिए, स्वयं से मित्रता करिए, और ये विश्वास जगाए श्रोताओं कि स्वयं का साथ भी सुखद हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जो स्वयं का साथी बन जाता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी। युवा साथियों, आप सोचिए कि आज हम अपने करियर, पढ़ाई और भविष्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या साथियों हम अपने व्यक्तित्व पर समय निकाल रहे हैं? साथियों, जिस प्रकार बैंक में जमा किया हुआ धन भविष्य में काम आता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं पर लगाया गया समय भी जीवन भर लाभ देता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में अच्छी आदतें, अच्छे विचार, नई पुस्तकें पढ़ना, कोई नई कला सीखना और अपने व्यवहार को बेहतर बनाना साथियों, ये सब जो है वो स्वयं में किया गया एक निवेश है। इसका लाभ केवल आज नहीं मिलेगा आपको, बल्कि पूरे जीवन मिलेगा। हम देखते हैं जागृति जी कि कई युवा हर छोटे बड़े निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिसका परिणाम ये होता है कि वे अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन साथियों, जब व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताता है तब अपने विचारों को स्पष्ट कर पाता है।
0: बिल्कुल।
1: सही गलत का विवेक विकसित करता है और धीरे धीरे वह परिस्थितियों के अनुसार ही सही निर्णय लेना सीख जाता है। यही गुण जागृति जी उसे जीवन में नेतृत्व करने योग्य बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वही है जो हमारा स्वयं से होता है। अगर हम स्वयं को समझना, स्वीकारना और अपने साथ खुशी से जीना सीख जाए तो कोई भी परिस्थिति हमें लंबे समय तक निराश नहीं कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, दूसरों का साथ जीवन को रंगीन बनाता है, लेकिन स्वयं का साथ जीवन को और मजबूत बनाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं कशिश, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपने सपनों को दिशा देते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरता है। श्रोताओं, आज का युवा यदि प्रतिदिन कुछ समय केवल स्वयं के लिए निकाले कशिश, अपने विचारों से बातचीत करे, अपनी गलतियों से वो जरूर सीखे, अपनी सफलताओं का सम्मान करे और अपने भविष्य की योजना बनाए, तो वो न केवल एक सफल व्यक्ति बनेगा बल्कि एक संवेदनशील, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीख जाते हैं वह दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटने की क्षमता रखते हैं। इसलिए याद रखिए, दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी वो है जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है, और वो साथी आप स्वयं है। इसीलिए स्वयं को समय दीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और हर दिन अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बस यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, कि हम केवल दूसरों का सहारा बनने की कोशिश नहीं करें, बल्कि स्वयं के भी सबसे अच्छे मित्र बने। क्योंकि जब इंसान स्वयं का साथ पसंद करना सीख जाता है तब अकेलापन अवसर बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: संघर्ष अनुभव बन जाता है, असफलता सीख बन जाती है और जीवन एक नई ऊर्जा से भर उठता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना युवा साथियों को यहाँ पर कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: सगुनो, घर तकी निकरते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान।
1: होवे, इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में विटामिन की कमी यानी कि पोषण तत्वों की कमी के क्या संकेत हैं और उन्हें हम प्राकृतिक तरीके से पूरा कैसे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों का स्वास्थ्य किसी एक दिन की देखभाल से नहीं बल्कि हर दिन अपनाई गई अच्छी आदतों से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: विटामिन की कमी भी अचानक नहीं होती है बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। इसलिए यदि कशिश हम बच्चों के खान पान व्यवहार ऊर्जा वृद्धि और दैनिक गतिविधियों पर नियमित ध्यान दें तो कमी के शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचाना जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम श्रोता साथियों भविष्य में कई नई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हम ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्या ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में विटामिन की कमी के क्या संकेत हो सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्राकृतिक तरीके हम अपनाएं। तो दोस्तों, हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि संतुलित और विविध भोजन से होता है। अंजलि जी, हमारे गांवों और स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज, बाजरा, मूंगफली और अन्य जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो बच्चों को जरूरी विटामिन और पोषक तत्व देने में सक्षम होते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, यदि परिवार इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को बच्चों के भोजन का नियमित हिस्सा बना ले तो अधिकांश पोषण संबंधित कमियों से बच्चों को बचाया जा सकता है।
1: जी जी।
0: साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल भोजन देना ही पर्याप्त नहीं होता। बच्चे का समय पर खाना खाना, खुलकर खेलना, पर्याप्त नींद लेना, सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना और स्वच्छता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: जब ये सभी बातें एक साथ अपनाई जाती है साथियों, तब शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठा पाता है और बच्चा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल, यही कशिश बात आती है कि माता पिता और शिक्षक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को बचपन से ही रंग बिरंगे फल, सब्जियां और घर का बना पौष्टिक भोजन पसंद करना सिखाया जाए तो आगे चलकर वह स्वयं भी स्वस्थ खान पान की आदत अपनाता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को भोजन के महत्व के बारे में सरल भाषा में समझाना होगा, उन्हें रसोई और भोजन की तैयारी से जोड़ना और नई पौष्टिक चीजें चखने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: ये भी याद रखें श्रोता साथियों कि हर कमजोरी का कारण केवल विटामिन की कमी नहीं होता। यदि बच्चा लंबे समय तक सुस्त रहे, उसकी लंबाई, वजन अपेक्षित रूप से न बढ़े, बार बार बीमार पड़े या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो घरेलू अनुमान लगाने के बजाय योग्य स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे उचित कदम है।
0: जी हाँ।
1: समय पर सही जांच और उचित मार्गदर्शन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में श्रोता साथियों, हम सभी को मिलकर ये प्रयास करने हैं कि बच्चे की थाली को केवल भोजन से नहीं बल्कि पोषण से हम भरेंगे। उन्हें ऐसी आदतें देंगे जो जीवन भर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें।
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ भोजन, नियमित दिनचर्या, प्राकृतिक आहार, स्वच्छता और परिवार का स्नेह, अंजलि जी, ये सभी मिलकर बच्चों को मजबूत शरीर, तेज दिमाग, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उज्जवल भविष्य प्रदान करते हैं। आज यदि हम बच्चों के पोषण पर सही ध्यान देंगे साथियों, तो कल वे स्वस्थ, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे।
1: जी हाँ।
0: और यही एक समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि बच्चों में विटामिन की कमी के कौन से संकेत होते हैं और प्राकृतिक तरीके से हम उन्हें समय रहते कैसे पूरा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।
2: चिटकी टक टक चिक टक, चिटकी टक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि बचपन जीवन की वह अवस्था है जब शरीर सबसे तेज गति से बढ़ता है और विकसित होता है। इसी समय हड्डियां मजबूत होती है, मस्तिष्क नई चीजें सीखता है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: इस पूरे विकास के लिए केवल पेट भरना कशिश पर्याप्त नहीं होता, बल्कि शरीर को अलग अलग प्रकार के विटामिन और खनिज की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि बच्चे के भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो उसका प्रभाव धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य, पढ़ाई, व्यवहार और विकास पर भी दिखाई देने लगता है। अक्सर माता पिता ये समझ नहीं पाते कि बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: जल्दी थक क्यों रहा है या उसकी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा। कई बार इसका कारण किसी गंभीर बीमारी के बजाय शरीर में विटामिन की कमी भी हो सकती है। इसलिए समय रहते संकेतों को पहचानना और प्राकृतिक तरीके से उनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें तो सबसे पहले श्रोता साथियों, हम यहाँ बात करते हैं विटामिन ए की। तो ये जो है वो बच्चों की आंखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसकी कमी होने पर बच्चे को रात में कम दिखाई देता है, आंखों का सूखापन, बार बार संक्रमण होना और त्वचा का रूखा होना जैसे लक्षण सामान्य

0: मिल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात करें विटामिन सी की, तो श्रोता साथियों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी कमी होने पर मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना और बार बार सर्दी जुखाम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए हमें बच्चों को आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू और टमाटर जैसी चीजें खिलानी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: वहीं विटामिन बी की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा देने, मस्तिष्क के विकास और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी होने पर कमजोरी, थकान, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में ध्यान न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए हमें बच्चों के खाने में साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: वहीं अब बात आती है कशिश विटामिन ई की, तो श्रोता साथियों शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ये विटामिन ई। इसके लिए हम बच्चों को बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और वनस्पति तेल खिला सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: याद रखना चाहिए कि हर बच्चे को विटामिन की दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। यदि बच्चा संतुलित, ताजा और अलग अलग प्रकार का भोजन करता है तो अधिकांश विटामिन प्राकृतिक रूप से ही मिल जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि आजकल पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, जंक फूड और मीठे पेय बच्चों के भोजन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इनसे अंजलि जी पेट तो भर जाता है बच्चों का, लेकिन शरीर को आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों परिवार को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की थाली में हर दिन अलग अलग रंग के फल, हरी सब्जियाँ, दालें, दूध और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हो। भोजन के साथ साथ स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। यदि बच्चा बार बार संक्रमण का शिकार होता है तो शरीर पोषक तत्वों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता।
1: जी हाँ।
0: इसलिए साफ पानी, हाथ धोने की आदत और संतुलित दिनचर्या भी अच्छे पोषण का हिस्सा है। हम श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे कि माता पिता को भी बच्चों की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा लगातार थका हुआ उन्हें दिखता है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, बार बार बीमार पड़ता है, वजन या लंबाई सामान्य गति से नहीं बढ़ रही है और उसकी त्वचा और बालों पर बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो इसे सामान्य बात मानकर अनदेखा माता पिता को नहीं करना है।
1: जी जी।
0: इसके बजाय समय पर स्वास्थ्य जांच और सही सलाह बच्चे के बेहतर विकास में मदद कर सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों का पोषण केवल आज की भूख मिटाने का विषय नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: जिस बच्चे को बचपन में सही पोषण मिलता है, वही आगे चलकर स्वस्थ शरीर, तेज बुद्धि, मजबूत आत्मविश्वास और बेहतर कार्य क्षमता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए विटामिन की कमी को केवल एक स्वास्थ्य समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे बच्चे के संपूर्ण विकास से जुड़ा हुआ विषय समझना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यह भी सच है कि बच्चों की अच्छी सेहत किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। परिवार, विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पूरा समाज मिलकर ऐसा वातावरण बना सकता है जहाँ हर बच्चे को पौष्टिक भोजन, सही जानकारी, स्वस्थ जीवन शैली का अवसर मिले।
0: जी हाँ।
1: यदि माता पिता बच्चों के जीवन में विविधता रखें, उन्हें स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों से परिचित कराएं और खाने की अच्छी आदतें विकसित करें, तो बच्चे प्राकृतिक रूप से आवश्यक विटामिन पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए महंगे खाद्य पदार्थों की नहीं, बल्कि सही जानकारी और नियमितता की आवश्यकता होती है।
0: जी हाँ।
1: हमें ये भी समझना होगा कि बच्चे की थाली जितनी रंगीन होगी उसका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। हरी सब्जियाँ, पीले और नारंगी फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, बाजरा, रागी, तिल, मूंगफली और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ मिलकर शरीर को वह शक्ति देते हैं जो किसी भी कृत्रिम विकल्प से अधिक लाभकारी होती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बचपन से ही बच्चों में प्राकृतिक भोजन के प्रति रुचि विकसित कर दी जाए तो वे बड़े होकर भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सक्षम बनते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पकी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरे रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनों घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लई ने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि बारिश ना मौसम में अपने फसल की देखभाल हरते कर आनु हूँ महत्व है ने कई कई बात नु अपना ध्यान रखने जरूरत है। तो अना विषय माते अमारी आप तक की घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहो आप रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: में बहुत जरूरी है और इसका पता लगेगा खेत के अवलोकन से। तो हमें समय समय पर खेत का अवलोकन करना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ रही है, कौन सा रोग है वो आपको दिख रहा है। जैसे जड़ें सड़ रही है या पौधे झुलस रहे हैं, पत्तियों पर धब्बे हैं, पत्तियां मुड़ रही है या तना में कोई गलन है या फफूंद तो नहीं है जड़ों में, तो इन चीजों का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजें हैं अगर आपको दिखाई देती है तो हमारे पास में 10 प्रणी है,
1: बिल्कुल
0: नीम आधारित दवाइयां हैं हमारी, नीमास्त्र है। इसके साथ में आप जो लहसुन प्याज अदरक का घोल है मिर्ची का, वो सब जो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी हाँ सर, आपने सही कहा, यही हम देखते हैं कि इस समय बारिश कई बार बहुत सी बार ज्यादा हो जाती है और खेत में सही व्यवस्था न होने की वजह से मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई बहनों को मिट्टी का कटाव कैसे रोकने की जरूरत है?
0: देखिए, परंपरागत तरीकों की हम बात करते हैं तो मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हमारे घास होता है पुराना,
1: बिल्कुल
0: उस घास को जहाँ पानी की निकासी है वहाँ रख दो आप। तो अगर वहाँ आप उस घास को लगा देंगे, उसकी मेड़ अगर घास के बनाएंगे तो पानी धीरे धीरे रस के जाएगा, आपकी मिट्टी का खाद भी नहीं जाएगा और आपकी मिट्टी का कटाव भी नहीं हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी तरफ खाली स्थान है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम चाहते हैं जहाँ ढलान होती है उधरी पानी निकालना, तो होता क्या है जब ढलान की तरफ पानी जाता है तो कटाव ज्यादा होता है, तो हमें उसको दूसरी दिशा से निकालना चाहिए ताकि वहाँ कटाव नहीं हो और जो आवश्यक पानी है वो निकल भी जाए। तो इस तरह से हमें करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें जैसे हम बोरी बंधान की बात करते हैं तो अगर ज्यादा कटाव है तो आप बोरियों में जो मिट्टी भर के और वो भी आप लगा सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: ताकि वो कटाव आपका नहीं होगा। इसके साथ ही जो बारिश के मौसम में जैसे इस बार है तो आप जो है आपकी मेड़ों पे जो अधिक जड़ों वाले पौधे हैं जैसे हमारे बांस है, तो बांस के पौधे क्या है कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और वो किनारों पे आप लगा सकते हैं ताकि आने वाली अगली बारिश में आपको वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है कटाव नहीं होगा तो इससे हमारी मिट्टी को बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि उसके पोषक तत्व है वो बहकर नहीं जाएंगे और हमारे खेत में ही रहेंगे। दूसरा है कि जो लंबे समय तक जो आपकी पोषक तत्व है वो आपकी जमीन में बने रहेंगे, उसकी नमी भी लंबे समय तक बनी रहेगी और जब उत्पादन होगा तब आपका उत्पादन अपेक्षाकृत अच्छा होगा, बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर अलग अलग फसलें होती है, कोई मक्का करता है, कोई सोयाबीन, कोई उड़द, कोई धान, तो कोई सब्जियाँ, तो फसलवार विशेष सावधानियाँ क्या क्या हमारे किसान भाई बहनों को बरतने की जरूरत है?
0: देखिए, जैसे हम बात करते हैं मक्का की, तो मक्का में हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा मक्का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है उसका एक तो है कि आप उसका पोषण प्रबंधन, जैसे हमने खाद की बात की,
1: बिल्कुल,
0: दूसरा खरपतवार है वो टाइम से निकाले और तीसरा खेत की निगरानी है आप 2 से 3 दिन में करते रहें,
1: जी जी,
0: ताकि कुछ कीटों का प्रकोप लगता है तो आप जो है परंपरागत दवाइयां हैं जैसे हमने 10 प्रणी नीमास्त्र की बात की, तो उस तरह से आप ब्रह्मास्त्र है तो उस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उसी तरह अगर उड़द मूंग की बात करते हैं तो एक तो क्या है कि यहाँ जो है कि जैसे आपके उड़द मूंग है तो वहाँ पानी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो उड़द और मूंग की जो तना होता है वो जल्दी सड़ने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें ध्यान रखना है अगर कुछ रोग है ये पत्तियों पे लग रहे हैं, कीड़े हैं, मच्छर है या इस तरह का है, तो आप हमें नीमा अस्तर छिड़क सकते हैं, 10 पानी छिड़क सकते हैं ताकि उनपे वो रोग ना लगे।
1: बिल्कुल।
0: और आपकी फसल प्रभावित ना हो। इसी तरह जो धान है वो जो 7-8 दिन में हम जो देखते हैं हमने रोपाई कर दी उसकी अच्छे से, तो अब इसके बाद में जब आपकी धान लग रही है तो आपको एक तो पानी की निकासी की व्यवस्था आप अच्छे से रखें ताकि ज्यादा पानी बराबर नहीं रहे। इसके साथ ही जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको हटा दे।
1: बिल्कुल।
0: होता क्या है कि कुछ पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो पूरे खेत में फैलते हैं, तो इस दौरान क्या है जो पौधे खराब हो गए उनको निकाल के आप साइड में कहीं दूर फेंक दे।
1: जी जी,
0: ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वही जो सब्जियों की हम बात करते हैं तो उठी हुई क्यारियां, जैसे हमने बोला कि थोड़ी मेड़ वाली क्यारियां बनाए ताकि उसका आवश्यक पानी उसके अंदर रहे और अनावश्यक है वो उसके अंदर नहीं आ पाए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा कि पौधों को सहारा दे, जैसे हम टमाटर मिर्ची की हम बात करते हैं तो इस दौरान क्या बारिश की वजह से हो सकता है कि आपकी फसल गिरने लग जाए,
1: जी जी,
0: तो आप छोटे छोटे डंडे हैं वो आप उनके पास में लगाए तो उनको सपोर्ट मिलेगा। और जो नीचे सड़ी गली पत्तियां हैं अगर वहां है तो उनको हटाते रहे, क्योंकि जब सड़ी गली पत्तियां होती है तो वहां रोग पैदा होने के चांस रहते हैं, तो इस तरह हमें इन चीजों का ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से बारिश के मौसम में उन्हें फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, तो अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोतागणों को और किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सावधानी जो फसल की सुरक्षा है, तो आप जो है खेत का अवलोकन नियमित करें और जिस तरह की बीमारी या जिस तरह का प्रकोप दिखे उसका तुरंत जो है आप इलाज करें परंपरागत तरीके से, ताकि आपको फसलों को नुकसान नहीं हो और आपका जो पैदावार है वो बेहतर हो।
1: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: માઇન બુનો જેમ કે આવડે આપણે વેસમી વાંગીલાલજી જોડે તક હતા અને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા તકે ઘણા આકાની વાત બતાડી હે। આશા કરો હો કે આ હંગરી વાત આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતની મોરે પડા સૂટા।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सुबह सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं, बचत की आदत बहुत जरूरी है परिवार और राष्ट्र दोनों के लिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी छोटी बचत से बड़ा भविष्य बनता है। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, आज की समृद्धि कल भी बनी रहे ये आवश्यक नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति परिवार और समाज बचत की आदत को अपनाते हैं अंजलि, वे कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत अधिक आत्मविश्वास से कर पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: बचत केवल धन को अलग रख देने का नाम नहीं है बल्कि दूरदर्शिता, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज का समय उपभोक्तावाद का युग है। आकर्षक विज्ञापन, ऑनलाइन खरीदी, फैशन और दिखावे की प्रवृत्ति ने लोगों को अनावश्यक से अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित कर दिया है। ऐसे माहौल में श्रोता साथियों, बचत की आदत केवल आर्थिक मजबूती नहीं देती बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, परिवार की स्थिरता और राष्ट्र की प्रगति का आधार भी बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा जाता है कि बचत की आदत परिवार और राष्ट्र दोनों की ताकत है।
1: जी हाँ अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस विषय पर बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है बचत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, कहा गया है कि समृद्धि केवल अधिक कमाने से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण बचत और संतुलित जीवन जीने से आती है। जिस घर में बचत का दीपक जलता है वहाँ आत्मविश्वास, सुरक्षा और खुशहाली का उजाला स्वयं फैल जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात करें कि बचत का क्या अर्थ है। तो श्रोता साथियों, बचत का अर्थ केवल पैसे बचाना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इसका अर्थ है आय का एक निश्चित भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, अनावश्यक खर्चों से बचना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, समय, ऊर्जा, पानी, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत करना।
0: जी हाँ,
1: सच्ची बचत वही है जागृति जी जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
0: बिल्कुल अंजलि, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है हमारे सामने की उनका पूर्व में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि कभी कोई बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, नौकरी छूट जाना, व्यवसाय में घाटा, शिक्षा या विवाह जैसे बड़े खर्च।
1: बिल्कुल,
0: अगर ये बचत नहीं होगी श्रोताओं तो ऐसी परिस्थितियों में परिवार आर्थिक संकट में फंस सकता है। वहीं अगर बचत करने वाला परिवार है तो वो कठिन समय में भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हर परिवार की पहली जिम्मेदारी अपने सदस्यों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि परिवार नियमित बचत करता है तो बच्चों की अच्छी शिक्षा संभव हो पाती है, चिकित्सा खर्च आसानी से पूरे होते हैं, घर बनाने और खरीदने का सपना पूरा हो पाता है, वृद्धावस्था श्रोता साथियों सुरक्षित बनती है और कर्ज लेने की आवश्यकता कम होती है। कहना चाहेंगे जागृति जी कि बचत परिवार को आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मनिर्भरता ही मजबूत समाज की नींव कहलाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, कहा गया है कि बचत केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि एक संस्कार भी है। भारतीय परिवारों में पहले बच्चों को गुल्लक दी जाती थी, वे छोटी छोटी राशि जमा करते थे। आज हम देखते हैं कि हम भी अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को गुल्लक देते हैं ताकि उनमें छोटी छोटी राशि जमा करने की आदत अभी से विकसित हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: इनसे उन बच्चों में धैर्य पनपता है, अनुशासन आता है और भविष्य के प्रति सोच भी विकसित होती है। आज अगर माता पिता बच्चों को बचत का महत्व सिखाएंगे वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज सोशल मीडिया के कारण लोग दूसरों की जीवन शैली देख कर प्रभावित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, अनावश्यक पार्टियां, दिखावटी समारोह, श्रोता साथियों इन सब पर अत्यधिक खर्च आर्थिक संतुलन पैदा करता है। सच्ची समृद्धि दिखावे में नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा में होती है। जो व्यक्ति अपनी आय से कम खर्च करता है वही वास्तव में संपन्न बनता है। कहना चाहेंगे कि बचत व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। जिस व्यक्ति के पास बचत होती है जागृति जी, वह आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाता है, कठिन समय में दूसरों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि श्रोता साथियों नए अवसरों का लाभ उठा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे व्यवसाय शुरू कर सकता है और निवेश कर सकता है। यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर राष्ट्र की शक्ति बनती है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे भारतीय परिवार में महिलाओं ने सदैव बचत की परंपराओं को जीवित रखा है। आज भी हम देखते हैं अंजलि कि घर के बजट का संतुलन, सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन और छोटी छोटी बचत की आदत से हमारे घर की महिलाओं ने बहुत सारे परिवारों को आर्थिक संकट से बचाया है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह और महिला बचत समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। श्रोताओं, गांवों में बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने से हमारे जो किसान हैं उनके संकट के समय उन्हें सहारा मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: साहूकारों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है, छोटे उद्योग विकसित होते हैं, स्वरोजगार बढ़ता है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी हम इसी तरह ढेर सारी बातों को जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
2: भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि बचत की आदत किस तरीके से परिवार और राष्ट्र दोनों की ताकत होती है, जिसपे हम जान पाए कि बचत क्यों जरूरी है, महिलाएं किस तरीके से पहले के समय में बचत करती थी और उसके कई सारे फायदे होते थे। यहीं अब बात आती है ग्रामीण भारत और बचत की। तो श्रोता साथियों, गाँवों में बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने से किसानों को संकट के समय सहारा मिल पाता है, साहूकारों पर निर्भरता घटती है, छोटे उद्योग विकसित होते हैं, स्वरोजगार बढ़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जब लोग बैंक, डाकघर और अन्य सुरक्षित संस्थानों में बचत करते हैं तो उनकी पूंजी सुरक्षित रहती है, ब्याज प्राप्त होता है, बैंक उसी धन से उद्योग और किसानों को ऋण देते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और इस प्रकार व्यक्तिगत बचत राष्ट्र विकास में योगदान दे पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, बचत का अर्थ केवल धन इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन स्थापित करना भी है श्रोताओं।
0: बिल्कुल,
1: और ये वो शक्ति है जो परिवार को संकट में सहारा देती है, बच्चों के सपनों को पंख देती है, बुजुर्गों को सुरक्षा का विश्वास देती है और पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।
0: जी जी
1: अंजलि, जब प्रत्येक परिवार अपनी आय, समय, ऊर्जा, जल, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख जाएंगे तब बचत एक व्यक्तिगत आदत न रहकर राष्ट्रीय चरित्र बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे नागरिक ही आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं। इसीलिए श्रोताओं, निसंदेह कहा जा सकता है कि बचत की आदत परिवार और राष्ट्र दोनों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, बचत की आदत के लिए हमें आय का कम से कम 10-20% हिस्सा बचा कर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मासिक बजट तैयार करना चाहिए, अनावश्यक खर्चों की सूची तैयार करनी चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। छोटी बचत को श्रोता साथियों महत्व दें, बच्चों को गुल्लक और बचत का अभ्यास कराएं, बिजली, पानी और भोजन की बर्बादी को रोकें, इसी के साथ आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझें, नियमित निवेश की आदत विकसित करें। श्रोता साथियों, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि एक मजदूर प्रतिदिन अपनी मजदूरी में से केवल 50 रुपए अलग रखता था तो वर्षों तक उसने यह क्रम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसी बचत से उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, छोटा मकान बनाया और बाद में एक छोटी सी दुकान शुरू की।
1: जी हाँ।
0: लोग उसकी सफलता को भाग्य समझते थे, लेकिन उसकी असली पूंजी उसकी नियमित बचत और अनुशासन था। ये उदाहरण श्रोता साथियों हमें बताता है कि बड़ी सफलता अक्सर छोटी निरंतर बचत से ही आती है।
1: बिल्कुल अंजलि, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों या बड़े उद्योगों से नहीं आती, बल्कि उसके नागरिकों की सोच, अनुशासन और बचत की संस्कृति से ही तय होती है।
0: बिल्कुल,
1: जो परिवार आज थोड़ी सी बचत का संकल्प लेते हैं वही कल आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीते हैं। यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति, सामाजिक स्थिरता और विकास की मजबूत नींव बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल अधिक कमाने की नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने की और नियमित बचत करने की है। बचत हमें संकट में सहारा देती है, अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता देती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य

0: बात की है कि हम केवल अधिक कमाने की नहीं बल्कि समझदारी से बचाने की आदत डाले। छोटी छोटी बचत से ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह धन के साथ साथ समय, जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत करेगा तो हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से अधिक सशक्त बनेगा। इसलिए दोस्तों, आइए हम सभी इस बात को माने कि आज की समझदारी भरी बचत कल की सुरक्षित समृद्धि है। हर परिवार बचत अपनाए, हर नागरिक जिम्मेदारी निभाए। जब बचत बनेगी हमारी आदत, तभी मजबूत होगा परिवार और समृद्ध बनेगा राष्ट्र।
1: जी हाँ अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को बस यही कहना चाहेंगे कि बचत केवल पैसों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी, परिवार को सुरक्षित और राष्ट्र को समृद्ध बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें संयम, दूरदर्शिता और अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, जिस प्रकार एक ईंट मिलकर मजबूत भवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार प्रत्येक परिवार की छोटी छोटी बचत मिलकर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बचत की हर छोटी शुरुआत बड़े भविष्य की मजबूत नींव है। जब हर घर बचत को अपनाएगा तब हर परिवार मुस्कुराएगा।
0: बिल्कुल,
1: जब हर परिवार आत्मनिर्भर बनेगा अंजलि, तब भारत समृद्ध, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में नई पहचान बनाएगा। यही बचत की सच्ची शक्ति है और यही परिवार का विश्वास है और यही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: अब समय हो चला है हमारे कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हो है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है मौसम के सामान्य चक्र में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। आज हम देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है, कभी लंबे समय तक सूखा रहता है, तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इन बदलावों का असर केवल पेड़ पौधों या जानवरों पर ही नहीं पड़ता, इसका असर सीधे सीधे इंसानों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आज हर गांव, हर शहर, हर परिवार किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है। यदि समय रहते मनीषा हम नहीं संभले तो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं गंभीर हो सकती हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। यह केवल पर्यावरण तक सीमित समस्या नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों पर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: पिछले कुछ वर्षों में श्रोता साथियों, पृथ्वी का औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसम के बदलते स्वरूप, जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगलों में लगने वाली आग जैसी घटनाएं हैं, वे जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जब पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ने लगता है, मौसम का संतुलन बिगड़ जाए और प्राकृतिक घटनाओं की तीव्रता बढ़ जाए, तो इसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसके प्रमुख कारण है जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक और कचरे का अनियंत्रित निस्तारण, बढ़ता शहरीकरण और इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, इन कारणों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यही बात करें मनीषा कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि गर्मी के समय में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक होता है। आज गर्मियों में तापमान पहले से अधिक बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: इससे हम देखते हैं कि लू लगना, चक्कर आना, शरीर में पानी की कमी होना, बेहोशी, रक्तचाप बढ़ना, हृदय रोग का खतरा और विशेष रूप से खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, बदलते मौसम के कारण मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे हम देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत ज्यादा हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: बारिश के बाद गंदा पानी जमा होने से कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं। इसी के साथ बताना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों को कि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के समय पीने का पानी दूषित हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: जिससे डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसे बीमारियां फैलती है। सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों को इससे होता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियां हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। श्रोता साथियों, जलवायु परिवर्तन के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हम देखते हैं कि अस्थमा, एलर्जी, खांसी और फेफड़ों के रोग, साथ ही श्रोता साथियों सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। यहीं अगर बात करें कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि लगातार सूखा, फसल खराब होना, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम देखते हैं कि लोगों में तनाव, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याएं वो बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। यदि श्रोता साथियों फसलें कम होगी तो भोजन की कमी होगी, पौष्टिक आहार का अभाव होगा, साथ ही हम देखते हैं कि बच्चों में कुपोषण, गर्भवती महिलाओं में कमजोरी जिसे समस्या है वो बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल, यही मनीषा बात करे सबसे अधिक प्रभावी कौन, तो श्रोता साथियों जलवायु परिवर्तन का असर सभी पर पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, पहले से बीमार व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है वो प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। जब मौसम बिगड़ता है तो खेती प्रभावित होती है, पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, पीने के पानी की कमी हो जाती है, आय कम हो जाती है, पोषण स्तर गिर जाता है। इसका सीधा असर पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं। तो ये बातें हमारी श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर जो है वो हमारे पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: इसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही मनीषा बात आती है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, यदि हम मिलकर प्रयास करें तो इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, पानी बचाना है, बिजली की बचत करनी है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन अपनाने हैं और घर के आसपास साफ सफाई रखनी है और वर्षा जल का संचयन करना है। अगर ये सारे प्रयास मनीषा हम सभी मिलकर करेंगे तो जलवायु परिवर्तन से बचाव हो सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, ये तो हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन के बचाव के उपाय के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं। यहीं अगर बात करें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम क्या प्रयास कर सकते हैं, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें खूब पानी पीना है। गर्मी में दोपहर के समय श्रोता साथियों बाहर जाने से बचें, साफ और ताजा भोजन करें, साथ ही श्रोता साथियों उबला हुआ या स्वच्छ पानी पिए, मच्छरों से बचाव करें, समय पर टीकाकरण को अपनाएं। यहीं अगर अंजलि जी बताएं कि सामुदायिक स्तर पर हमें क्या प्रयास करने चाहिए।
0: जी जी।
1: तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि गांव की हमें नियमित सफाई का अभियान चलाना है, पौधारोपण हमें करना है, साथ ही जल स्रोतों की रक्षा करनी है।
0: बिल्कुल।
1: स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे आसपास के गाँव के जो लोग हैं उन्हें भी हमें जागरूक करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि सरकार और समाज की क्या भूमिका है। तो श्रोता साथियों, हम अगर सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि सही तरीके से सही नहीं हो पाएगी। इसलिए दोनों को मिलकर प्रयास करने हैं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, मौसम संबंधित समय पर चेतावनी देना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के कानूनों का पालन करना।
1: बिल्कुल।
0: समाज की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो कल हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। हर लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा देगा, हर बचाई गई पानी की एक बूंद जीवन बचाएगी, हर जागरूक नागरिक जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक सच्चा योद्धा बन सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का विषय नहीं है बल्कि मानव स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: बढ़ता तापमान, प्रदूषण, जल संकट, नई बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं यह संकेत देती है श्रोता साथियों कि अब केवल चिंता करने का नहीं बल्कि सामूहिक कार्रवाई करने का समय है। स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है श्रोता साथियों जब प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बना रहे। आइए श्रोता साथियों हम अपने घर, गांव, समुदाय से शुरुआत करें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जल बचाएं, स्वच्छता अपनाएं, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। यही प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए अंजलि जी स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी विरासत बनेगा।
0: बिल्कुल, यही बात करें श्रोता साथियों तो जलवायु परिवर्तन केवल मौसम में बदलाव का नाम नहीं बल्कि यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे खान पान, स्वच्छ जल, शुद्ध हवा, खेती, पशुपालन और जीवन शैली तक पहुंच चुका है।
1: जी हाँ।
0: यदि हम इसे केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी मानकर अनदेखा करेंगे तो आने वाले वर्षों में इसका दुष्प्रभाव और अधिक गहरा होगा। इसलिए श्रोता साथियों, हर नागरिक, हर परिवार और हर समुदाय को अपनी भूमिका समझनी होगी और पर्यावरण संरक्षण को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना होगा। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रकृति स्वस्थ रहे। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसे उपाय अपनाने होंगे जो संसाधनों का संरक्षण करे और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करे।
1: बिल्कुल।
0: छोटे छोटे प्रयास जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, कचरे का सही प्रबंधन, स्वच्छता बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना, ये सारे परिवर्तन मिलके बड़ी परिवर्तनों की नींव रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ानी होगी, समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और बदलती जलवायु के अनुरूप जीवन शैली अपनाना भी उतना ही आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, जब समाज का हर वर्ग मिलकर प्रकृति की रक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प लेगा तभी हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ नागरिक और सुरक्षित जीवन एक दूसरे के पूरक बनकर समृद्ध, खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे।
1: जी हाँ।
0: यही हमारी साझा जिम्मेदारी यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा सच्चा दायित्व है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल।
1: और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
2: नमस्कार।

पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, कहते हैं ना कि समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि समय एक ऐसी अनमोल पूंजी है साथियों, जो हर किसी को बराबर ही मिलती है। ना कोई अमीर है तो ज्यादा खरीद सकता है इसे, ना कोई गरीब है जो इसे बचा सकता है। फिर भी श्रोता साथियों, फर्क क्यों पड़ता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है साथियों, समय का सही उपयोग। क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है, उसे पता है कि उसे समय का सदुपयोग कैसे करना है, और वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में असफल भी नहीं होता। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर श्रोता साथियों आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और समय को इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी जाती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोता साथियों की शुरुआत में मनोरंजन करना भी जरूरी है, और ये तो हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है। तो पहले उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि मैं आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बातचीत कर रही हूँ एक नए विषय को लेकर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं समय के सही उपयोग को लेकर। साथियों, कहते हैं ना कि अगर जीवन में सबसे कीमती कुछ चीज है तो वह है हमारा समय। क्योंकि श्रोता साथियों, पैसा अगर खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है साथियों, लेकिन एक बार जो समय निकल गया उसे वापस कभी नहीं पाया जा सकता। और यही हमारे वास्तविक जीवन का सत्य है। क्योंकि श्रोता साथियों, समय की कीमत वही समझता है जिसने इसे खोया हो। आज हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। साथियों, अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझूं, तो मेरे घर के पास में एक रवि नाम का लड़का रहता है। उसके पापा उसे बार बार कहते हैं कि रवि बेटा ये काम कर ले, रवि बेटा वो काम कर ले, लेकिन रवि जी कहते हैं कि पापा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो श्रोता साथियों, क्या सच में हमारे पास समय की कमी है? नहीं साथियों, समय की कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ प्राथमिकता की। क्योंकि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं ये हमें ही नहीं पता चलता। तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि समय का खर्च हम कहाँ कर रहे हैं। क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है? क्योंकि श्रोता साथियों, व्यस्त होना जरूरी नहीं है, सही काम में व्यस्त होना जरूरी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तो इस चीज का समय ही नहीं था, या पापा ये काम आपने करने के लिए बोला था, इस काम को करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचा। साथियों, हम देखते हैं कि एक छात्र जो है वो हमेशा ये कहता है कि उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, लेकिन वह रोज घंटों मोबाइल और टीवी पर समय बिताता है। एक दिन उसके शिक्षक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं था, तो तुमने ये काम कर कैसे लिया, क्या तुम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे? साथियों, उस दिन के बाद छात्र ने अपने समय का हिसाब करना शुरू किया कि वो कौन सा समय कहाँ बिता रहा है। धीरे धीरे उसने अपने सही समय का उपयोग करना सीख लिया और कुछ ही समय बाद वह क्लास में श्रोता साथियों अव्वल आने लगा। दोस्तों, यही है समय की असली पहचान। हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास समय का सही उपयोग करने की चाबी है, यानी कि उसे पता है कि वह कैसे समय का सही उपयोग कर सकता है, कहाँ इसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कैसे कर सकता है, तो वो व्यक्ति श्रोता साथियों अपने जीवन में जरूर सफल होता है। क्योंकि हम वर्तमान में ये समस्या तो बहुत ज्यादा देखते हैं, खास करके हमारे बच्चों में हम ये देखते हैं साथियों कि अगर हम हमारे बच्चों को कहें कि बेटा ये काम कर लेना, तो वो कहेगा कि पापा मैं कल कर लूंगा। और कल जब हम उससे ये पूछेंगे कि तूने ये काम कर लिया, तो वो बोलेगा नहीं पापा, समय ही नहीं मिला। तो श्रोता साथियों, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के सामने कि मुझे समय नहीं मिलता, ये हम कह सकते हैं कि समय की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और किस काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि किस काम को करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है और किस काम को हम कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन में समय के सही उपयोग करने को प्राथमिकता देना चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा काम सही समय पर होना चाहिए और कौन सा काम करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मैं उसे बाद में करूं। क्योंकि दोस्तों, जो समय की कद्र करता है, समय उसे ही सफल बना देता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर बात करूं आज के हमारे युवाओं की, तो साथियों, आज के युवाओं के लिए तो समय का सही उपयोग करना इतना जरूरी हो गया है कि बात ही कुछ और हो जाती है। क्योंकि यही समय उनके भविष्य को बदल रहा है साथियों। अगर अभी भी हमारे युवा साथी समय का सही उपयोग करना नहीं समझेंगे, तो हम कह सकते हैं साथियों कि हम आगे फिर तो समय के उपयोग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मेरा आपसे कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान के माध्यम से, कि हमें अपने जीवन में समय को प्राथमिकता देनी है, लेकिन उसमें भी सही समय क्या है उसकी भी पहचान करनी है। तो जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चली रही है साथियों, ये बातें मैं आगे भी करना चाहूंगी। आगे भी हम जानेंगे श्रोता साथियों कि समय का सही उपयोग करना हम कैसे सीखें, तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में,
आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बहुत ही अच्छा विषय आपके साथ चल रहा है और गीत से पहले भी बातचीत हम कर रहे थे समय के सही उपयोग को लेकर। और गीत से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है समय के उपयोग को समझने की, समय के महत्व को समझने की, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युवाओं के लिए यही सही समय है जो उनके भविष्य को तय करेगा। साथियों, अगर युवा आज अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे दोस्तों, तो उनका कल उज्जवल होगा। लेकिन अगर वे भी समय को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो हम देखेंगे साथियों कि हमें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज का किया गया सही उपयोग ही कल की सफलता का आधार बनता है। श्रोता साथियों, तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि समय का सही उपयोग करना हर पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में अगर हम अपने बच्चों को बताते रहें कि समय का सही उपयोग करना क्यों जरूरी है, तो बचपन से ही उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम युवा साथियों को समझाएं कि समय कितना महत्वपूर्ण है, तो अगर वो इसी समय भी समझ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, समय का उपयोग करने की कोई उम्र नहीं होती। हर समय का सही उपयोग करना हम हर उम्र में सीख सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों सही समय निकल गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमें समय का सदुपयोग करना है, तो इसी बीच प्रश्न ये आता है कि समय का सही उपयोग करना हमें सीखना कैसे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि समय का सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हर दिन की एक योजना बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही सुबह आप ये तय करें कि आपको आज पूरे दिन में करना क्या है, यानी कि आप एक शेड्यूल बना लें कि इस समय पर आप ये कार्य करेंगे, उस समय पे आप ये कार्य करेंगे। इससे होगा क्या साथियों, इससे आपका समय भी बचेगा और आप हर काम को सही समय पर कर पाएंगे। दूसरी बात, जरूरी काम को आप प्राथमिकता दें साथियों, क्योंकि आपको करना क्या है कि पहले आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो कर लेना है। बाद में श्रोता साथियों, छोटे मोटे काम तो लगे रहेंगे। उसके बाद तीसरी बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग श्रोता साथियों जितना हो सके सीमित मात्रा में करना है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल कहीं नहीं जा रहा है, समय जा रहा है। तो हमें समय का उपयोग करना है, मोबाइल का नहीं। समय का हिसाब भी रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दिन में समय कहाँ जा रहा है, किस काम में जा रहा है, इसका हिसाब होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर अपना समय व्यर्थ जाने दे रहे हैं और कहाँ पे आप सही समय का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, समय को नहीं जाने दे, खुद मैनेज करना सीखिए कि किस तरीके से आप समय का सदुपयोग करेंगे, समय को मैनेज करेंगे।

उपयोगी सफलता की कुंजी है। हर मिनट की कीमत आपको समझनी होगी, क्योंकि यही मिनट मिलकर जीवन बनाते हैं। श्रोता साथियों, आज से ही अपने समय को पहचानिए। तो आज से ही श्रोता साथियों, अपने सही समय को पहचानिए, उसे सही दिशा में लगाइए और अपने सपनों को सच बनाइए। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि बातें जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, तो विदा मैं जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ कार्यक्रम में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में समय के महत्व को लेकर जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। और उन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर श्रोता साथियों, आप भी अपने जीवन में समय के महत्व को जरूर समझेंगे। तो जैसा कि बातें तो पूरी हो चुकी है, समय भी श्रोता साथियों अब हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायी विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाइयों ने बोनो आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणा पता माते। हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी शको हमारे अणा फोन नंबर माते। हमारू फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो आ तो हती हमारी आज की सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।